भूपेंद्र सिंह की आवाज में अभी हमने आपको सुनवाया रामचरितमानस से संगीत में पाठ। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7 बजे आप सुनेंगे, 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। 7:35 पर कार्यक्रम रहेगा लोक संसार। 8 बजे समाचार प्रभात और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:30 पर आप सुनेंगे हिमाचल डायरी का आज का अंक। 8:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी की शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। पर विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:05 पर आप सुनेंगे लघु वार्ता। 10:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पंजाबी फ्लेवर। 10:45 पर कार्यक्रम रहेगा पहाड़ी लोक गीत लोक रंग। सुबह 11 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। 11:05 पर विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे सुगम संगीत और 12:30 पर कार्यक्रम रहेगा सैनिकों के लिए। दिन में 1 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा और दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज। 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 2:30 पर विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। 3 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। 3:10 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। शाम 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भजन।

संध्या। 5:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा मंच और 6 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। 6:30 पर कार्यक्रम रहेगा किसान वाणी। 7 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएंगे। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो दी तान। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। 8 विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 आप सुनेंगे न्यूज 8:09 जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 9:15 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। रात्रि 10 कार्यक्रम रहेगा खेल जगत और 10:30 पर आप सुनेंगे रोमांटिक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। रात्रि 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। तो ये तो थी हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार और सुबह 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
3: People to people connect.
0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स A20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: का टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:06 हुए हैं, लीजिए वो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

जी सुप्रभात हमीरपुर, कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो हमसफर शिवाली। देखिए एक नई सुबह, एक हर सुबह एक मौका लेकर आती है अपने आप को साबित करने का, अपनी चाहतों को पूरा करने का और कुछ रिश्तों को थामने का, अपने आप को संवारने का और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का। और ये सुबह बहुत कुछ अपने साथ लेकर आती है ताकि इस नई सुबह की शुरुआत हम हंसते गाते मुस्कुराते करें। तो चलिए एक खूबसूरत से विचार के साथ हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। देखिए श्रोताओं, गिरने से डरना नहीं है और हर बार उठना हमें सीखना है। हार जीत का ये खेल है जीवन, अनुभवों को हमने लिखना है। हिम्मत को अगर दिल में, पहाड़ भी झुक जाएगा। जो खुद पर रखे भरोसा, समय भी उसके लिए रुक जाएगा। बिल्कुल, देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं, टगमगाते हैं, गिरते हैं, ज़रूर गिरते हैं, लेकिन हमें गिरने से डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, उठना है, खड़े होना है। क्योंकि देखिए हार जीत तो इस जीवन में लगी ही रहती है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कामों में असफलता महसूस करते हैं, गिर जाते हैं और उनसे डर जाते हैं ना, तो हम कभी कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए हिम्मत होनी चाहिए और अगर आप में हिम्मत है, भरोसा है, तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी पार कर सकते हैं। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखना और अपने आप को मजबूत रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसी के साथ एक खूबसूरत से गीत के साथ।

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर एएस ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारे नाम।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
3: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
2: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी,
3: हाँ,
4: आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: आरबीआई कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
7: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
9: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
7: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
9: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
7: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
10: इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में। और देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको गीत सुनवाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, यानी कि आज के इतिहास की ओर। पंद्रह सौ इक्यावन की अगर बात करें तो सलीम बाद में सम्राट जहांगीर का जन्म आज ही के दिन हुआ। 1607 में जेम्स टाउन वर्जीनिया अमेरिका में पहली स्थायी अंग्रेजी बस्ती बनी थी। 1948 में इसराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे वह एक संप्रभु राज्य बना। 1954 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने घोषणा की कि हाउस ऑफ द पीपल को अब लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। 1962 में प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। 1952 में भारत सरकार ने श्रीलंका के विद्रोही संगठन लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2008 में दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध बल्लेबाज एबी डेविलियर्स ने पहले IPL में शतक लगाया था। 2001 में भारत और मलेशिया में 7 समझौते आज के दिन हुए थे। 2004 में डेली मिरर नामक पत्रिका ने इराक में युद्धबंदियों पर कथित अत्याचार को दर्शाने वाली झूठी तस्वीरों के प्रकाशन के लिए ब्रिटेन से माफी मांगी थी। 2007 में जापान ने अपने शांतिवादी संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को मंजूरी दी थी। 2008 में टाइम्स NIE ने इंटरनेशनल न्यूज़पेपर मार्केटिंग एसोसिएशन INMA अवार्ड 2008 में जीता। 2010 में भारत रूस के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, व्यापार और निवेश आदि में 22 समझौते आज के दिन हुए थे। 1657 की अगर बात करें तो संभाजी शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी ये रहे, इनका जन्म आज के दिन हुआ। 1892 में अरुण चंद्र गुहा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता ये रहे हैं, इनका जन्म भी आज के दिन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय डायलन थॉम्स दिवस, ये वेल्श कवि डायलन थॉम्स की याद में हर साल आज के दिन मनाया जाता है। तो ये तो था हमारा आज का इतिहास। और चलो ये अब बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में। अभी मुकेश कुमार की आवाज में अभी हमने आपको ये गीत सुनवाया। समय हुआ है 7:24 और अब हमारी आज की कुछ खास खबरों के साथ। प्लस टू में पास होने वाले 7 साल में सबसे कम सप्लीमेंट्री भी रिकॉर्ड। CBSE ने बुधवार को 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। कुल छात्रों में से 85.20% पास हुए हैं। परिणाम पिछले साल के मुकाबले 3.19% कम है। इतना ही नहीं, साल का पास प्रतिशत पिछले 7 साल में सबसे कम है। इससे पहले 2019 में 83.40 रिजल्ट रहा था। CBSE ने इस साल मूल्यांकन में पहली बार ऑन स्क्रीन मार्किंग लागू की थी और इसके तहत करीब 98.66 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया गया। बोर्ड के अनुसार इसे अंकों के योग जैसी मानवीय गलतियां पूरी तरह खत्म करने में मदद मिली और मूल्यांकन अधिक पारदर्शी हुआ। धान का समर्थन मूल्य 72 रुपये बढ़ाकर 2,441 रुपये हुआ। केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP बढ़ा दिया है। प्रमुख फसल धान के MSP में प्रति क्विंटल 72 रुपये का इजाफा किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट समिति ने 14 खरीफ फसलों के लिए मार्केटिंग सीजन 2026-27 में MSP बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सबसे अधिक सूरजमुखी का MSP 622 रुपये बढ़ाया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि MSP उत्पादन लागत से 50% ज्यादा है। नीट UG 2026 पेपर लीक मामला में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दाखिल कहा है कि NTA पर छात्रों का भरोसा खत्म हो चुका है, इसीलिए दोबारा परीक्षा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। देश से पेट्रोल डीजल बचाने की अपील करने के बाद अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले में से 50% गाड़ियां कम कर दी हैं। बुधवार को ये सिर्फ 4 गाड़ियों के साथ कैबिनेट की बैठक में पहुंचे। हालांकि SPG प्रोटोकॉल के मुताबिक जरूरी सुरक्षा इंतजाम बनाए रखे हैं। PM के काफिले में SPG का सुरक्षा कवच होता है, जिसमें 12 से 15 गाड़ियां होती हैं। उन्होंने SPG को कहा है कि जहां संभव हो बिना नई खरीद किए काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करें। गृह मंत्री श्री अमित शाह और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियां रखी हैं। भारत की रॉकेट वुमन और इसरो वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ की साड़ी अमेरिका के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में प्रदर्शित की गई। उन्होंने ये साड़ी उस दिन पहनी थी जब मंगलयान पृथ्वी की कक्षा छोड़ मंगल की 300 दिन की यात्रा पर निकला था। नंदिनी मिशन की डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर थी। भारत 2014 में पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश था। भारत से विदेशी मुद्रा को बाहर जाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सोना चांदी पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने का असर बुधवार को दिखा। इससे 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 9,345 तो चांदी 22,853 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई है। ये सोने की कीमतों में अब तक की दूसरी तो चांदी में तीसरी बड़ी उछाल है। इससे पहले 29 जून को सोना 10,405 रुपये महंगा हुआ था। इससे

1.60 लाख और 2.87 लाख रुपए पर पहुंच गए हैं। तो ये तो थी हमारी आज की कुछ खास खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं एक और गीत के साथ।

आशा भोंसले की आवाज़ में अभी हमने आपको ये गीत सुनवाया। और चलिए बढ़ते हैं अपने आज की कुछ खास खेल खबरों के साथ। आईपीएल 2026 के 18वें मैच में गुरुवार को पंजाब किंग्स अपने दूसरे होम ग्राउंड धर्मशाला के एचपीसी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस की मेजबानी करेगा। पंजाब के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बेहद अहम है, जबकि मुंबई के लिए केवल अपनी साख बचाने की लड़ाई है। मैच का सीधा प्रसारण आज शाम 7:30 पर आप जियो स्टार पर भी देख सकते हैं। थाईलैंड ओपन में भारतीय शटलरों ने धमाकेदार शुरुआत की है। बुधवार को किदांबी श्रीकांत ने उलटफेर करते हुए अंतिम 16 में अपनी जगह बनाई। वहीं पीवी सिंधु और युवा खिलाड़ी देविका सिहाग ने भी अपने अपने मैच जीते। श्रीकांत ने 8वीं वरीय

मान्यता प्राप्त सिंगापुर के लोह कीन येप को सीधे गेमों में 21-14, 21-15 से पराजित किया। श्रीकांत ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लोह को मात्र 30 मिनट में बाहर कर दिया। दुनिया के नंबर वन टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन की क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने क्वालिफायर एंड्रिया पेरिग्रोना को 6-2, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ सिनर ने नोवाक जोकोविच के लगातार 31 मास्टर सीरीज मैच जीतने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बेसबॉल के दीवाने देश जापान में अब क्रिकेट की आवाज भी सुनाई देने लगी है। नागोया शहर से करीब 40 मिनट दूर बने कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में जब बल्लेबाज ने गेंद को जोरदार छक्का लगाकर मैदान के बाहर रेत और झाड़ियों में पहुंचाया तो दर्शक तालियां तो बजा रहे थे, लेकिन साथ ही हाथ में नियमों की किताब भी पकड़े हुए थे। उन्हें खेल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन रोमांच जरूर महसूस हो रहा था। तो ये तो थी हमारी आज की खास खेल खबरें। तो अब इसी के साथ कार्यक्रम सुप्रभात अब यहीं पर खत्म होता है। अपनी रेडियो हम सफर शिवाली को दें इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 7:36 हुए हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संसार।

कार्यक्रम लोक संसार सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हमसफर शिवाली। देखिए, इस कार्यक्रम में हम ढेरों सारी जानकारियाँ अपनी लोग अपने हिमाचल से जुड़ी जानकारियों के बारे में आपको अवगत करवाते हैं, नए नए हिमाचल दर्शन करवाते हैं, हिमाचल के पहाड़ों के दर्शन करवाते हैं, हिमाचल की नदियों के बारे में आपको बताते हैं। तो बहुत सारा बहुत कुछ है यहाँ पर हमारे हिमाचल को जानने के लिए। और देखिए, आज हम बात करेंगे अपने हिमाचल की प्रमुख नदियों के बारे में। अरे, हमारे हिमाचल की प्रमुख नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। देखिए, ये नदियां बर्फ और वर्षा से पोषित हैं और सिंधु और गंगा जल क्षेत्रों का ये हिस्सा है। सतलुज हिमाचल की सबसे लंबी 1400

748 किलोमीटर नदी है, जबकि चिनाब जल घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ी है। तो आइए आज इन्हीं के बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे और इनके बारे में आज आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले सतलुज नदी की अगर बात करें तो सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 1448 किलोमीटर है और सतलुज नदी को प्राचीन नाम से वेदों में शुत्रुदी और संस्कृत में शतद नाम से जाना जाता है। यह सतलुज नदी तिब्बत के मानसरोवर रक्कस झील से निकलती है और ये नदी शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किन्नौर को छोड़ शिमला जिले के छौरा में ये प्रवेश करती है और सतलुज नदी भाखड़ा गांव को छोड़कर पंजाब के नंगल में प्रवेश करती है। सतलुज की सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो बसपा नदी, ये बसपा नदी बसपा पहाड़ियों से होकर करछम कल्पा के पास सतलुज नदी में प्रवेश करती है। स्पीति नदी कुंजम श्रृंखला से निकलती है। नमग्या किन्नौर में सतलुज में ये प्रवेश करती है और तेकबो और कब्जियां स्पीति नदी को ये सहायक नदियां हैं। नौगली खड़ सतलुज में रामपुर बुशहर में जाकर मिलती है। बात करें ब्यास नदी की तो ब्यास नदी को प्राचीन नाम से वेदों में अर्जकिया और संस्कृत में विपाशा नाम से जाना जाता है। ब्यास नदी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होते हुए रोहतांग दर्रे भृगु तुंग से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 460 किलोमीटर है और ब्यास नदी बजौरा से मंडी में संधोल से कांगड़ा में ये प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियां 3 जिलों से होकर गुजरती है। कुल्लू जिले में ब्यास की सहायक नदियां हैं सैंज नदी, ये नदी स्पीति घाटी की सुपाकनी चोटी से निकलकर लारजी के पास ब्यास नदी पर मिलती है और हारला नंदी भूंतर के पास ब्यास नदी में जाकर मिलती है। तीर्थन नदी ये पीर पंजाल श्रेणु से होकर लारजी के पास ब्यास नदी में जाकर मिलती है और पार्वती नदी ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पार्वती नदी है जो कि मानतलाई झील से निकलकर ब्यास नदी में मिलती है। मंडी जिले में ब्यास की सहायक नदियाँ हैं उहल नदी पंडोह और मंडी के बीच से होकर ब्यास नदी में मिलती है। बेकर खड, ये खड ब्यास नदी में संधोल में मिलती है और सोन खड ब्यास नदी में काड़ी के पास मिलती है। जोनी खड ब्यास नदी के पास पंडोह में जाकर मिलती है और कांगड़ा जिले की ब्यास की सहायक नदियों की अगर बात करें तो उत्तरवर्ती नदी ये विनमा बाणगंगा अवा गज और चक्की ब्यास की उत्तरवर्ती सहायक नदियां हैं। ये गज खड ब्यास नदी में पौंग झील के पास मिलती है। दक्षिणवर्ती नदियां कुणा मान खड दक्षिण से ब्यास नदी में जाकर मिलती हैं। आगे और नदियों के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हो जाए एक लोकगीत।

0: अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी, इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम लोक संसार में। और देखिए, हम बात कर रहे थे अपनी प्रमुख नदियों के बारे में। रावी नदी की बात करें तो रावी नदी को प्राचीन नाम से वेदों में पुरुषानी और संस्कृत में इरावती नाम से जाना जाता है। और ये नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है। रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 158 किलोमीटर है। रावी नदी की सहायक नदियों की अगर बात करें तो ये स्यूल नदी संगड़ी खड, विद्रोह खड और जुवांस खड के संगम से स्यूल नदी का निर्माण होता है। बैरा खड के मिलने से स्यूल नदी विशाल रूप धारण कर लेती है और स्यूल नदी लोअर चुराह के चौड़ा नामक स्थान पर रावी नदी में मिलती है। बड़हल, ओबड़ी, तुंडा, साल, बैरा खड रावी की सहायक है। चिनाब की बात करें तो ये चिनाब नदी का वैदिक नाम असिकनी है। चिनाब नदी बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। चिनाब नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, चंद्रा और भागा। चंद्रा नदी चंद्रताल और भागा नदी सूरज ताल से निकलती है, इसीलिए इस नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 7500 वर्ग किलोमीटर है और चिनाब नदी की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल में यहाँ 122 किलोमीटर है। और पानी के घनत्व के हिसाब से चिनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो चंद्रा नदी लाहौल घाटी के बारालाचा दर्रे के समीप चंद्रताल झील से निकलकर टांडी में भागा नदी में मिलती है। भागा नदी लाहौल घाटी के बारालाचा दर्रे के समीप झील से निकलकर टांडी में चंद्रा नदी में मिलती है और मियार नाला, तवी नदी, सैचू नाला चिनाब की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी है। ये यमुना नदी उत्तराखंड के कलिंद पर्वत यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी उत्तराखंड के गढ़वाल से होते हुए हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के खोदरी माजरी गांव में प्रवेश करती है। ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर ये हरियाणा में बहती है और यमुना नदी की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो गिरी नदी, ये नदी जुब्बल की कुप्पर चोटी से निकलती है। ये नदी पौंटा के मोकामुमपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। अश्विनी और जलालगिरी नदी की ये सहायक नदियां हैं। टॉस नदी, ये नदी रूपिन और सुपिन दो नदियों के संगम से नैतवार से निकलती है और टॉस नदी खोदरी माजरी के पास यमुना में मिलती है। पब्बर नदी टॉस की सहायक नदी है और ये नदी चंद्राहन झील से निकलती है। पब्बर नदी चक्राता के पास टॉस नदी में मिलती है। आंध्रा और पटसरी नदी पब्बर की सहायक नदियाँ हैं। आंध्रा नदी चिड़गांव से और पटसरी नदी खड़ा पत्थर शिमला से निकलकर पब्बर नदी में मिलती है। तो ये तो थी हमारी हिमाचल की खास नदियाँ।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: इस ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम लोक संसार में, और हम बढ़ते हैं आज की लोक खबरों के साथ। शहर के कई क्षेत्रों में 17 को बिजली बंद रहेगी। बिजली उपमंडल दो हमीरपुर के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड फीडर में जियो स्विच लगाने, HT लाइन की मरम्मत और पेड़ों की काट छांट का कार्य होगा। इस कार्य के चलते 17 को विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब चिकित्सकों से मिलने के लिए मरीजों को लंबी कतार में लगकर OPD पर्ची बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत मरीज घर बैठे ही सुगम स्वास्थ्य ऐप के माध्यम से डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अस्पताल प्रबंधन 1 महीने के भीतर सभी 23 OPD में ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान की सुविधा शुरू करने जा रहा है, जिससे हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत लागू किया जाएगा।

0: डिजिटल दौर में किताबों से दूर होते विद्यार्थियों को फिर से पढ़ाई से जोड़ने के लिए स्कूल स्तर पर विशेष पहल की जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना, ताकि वे सामान्य ज्ञान, साहित्य, विज्ञान, कहानियां और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित हो सकें। जिला परिषद हमीरपुर के 19 वार्डों, जिला की सभी 6 पंचायत समितियों के कुल 119 वार्डों और जिला की कुल 242 ग्राम पंचायतों में प्रधान उपप्रधान वार्ड सदस्यों समेत 1860 पदों के लिए दाखिले 5375 नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी हुई है। तो ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, और अब इसी के साथ अपनी रेडियो हमसफर शिवाली को दे इजाजत। नमस्कार। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर। सुबह की 8 बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश

0: सचिव असीम महाजन ने बताया।
1: द यूएई इज एन इंपॉर्टेंट पार्टनर।
2: यूएई हमारी ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 MMTPA

0: समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव

0: निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
1: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमरीका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
2: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों के भी लाभ पहुँचाएगा। अब किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
5: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
6: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी।

0: श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। दो दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमेरिका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और एक दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं। आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, 4 और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2,441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से

हिमाचल डायरी के आज के अंक में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस अंक में मैं हूं आपकी अपनी रेडियो हम सफर शिवाली। तो चलिए पहले अंक के साथ शुरुआत करें। पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर राज्यपाल ने शुरू की मुहिम। पश्चिम एशिया संकट और लगातार बढ़ती तेल कीमतों के बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बड़ा संदेश देते हुए खुद से बदलाव की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील को आगे बढ़ाते हुए राज्यपाल ने लोक भवन को अब फ्यूल कंजर्वेशन जोन घोषित कर दिया है। अब हर रविवार को किसी भी सरकारी वाहन में एक बूंद भी पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल नहीं होगा। जरूरी बैठकों और कार्यक्रमों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निपटाया जाएगा और यात्रा के लिए सामूहिक व्यवस्था भी अपनाई जाएगी। प्रदेश की 5,000 करोड़ रुपए की आर्थिकी को बचाने के लिए बागवानी विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी सेब के बगीचों को ओलों की मार से बचाने के लिए जारी की गई है। बागवानी विभाग ने बागवानों को ओलावृष्टि से प्रभावित बगीचों में 3 बार स्प्रे करने का सुझाव दिया है। वहीं ओलावृष्टि रोधी जाली को सबसे प्रभावी समाधान बताया है। विभाग ने जाली को सही तरीके से लगाने का सुझाव दिया है और साथ ही ओलावृष्टि के तुरंत बाद 100 ग्राम कॉरंडिज्म या 600 ग्राम मैनकोजेब का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करने की कहा है। इससे के अलावा ओलावृष्टि के 3 से 4 दिनों के अंदर 200 ग्राम बोरिक एसिड, 500 ग्राम जिंक सल्फेट, 250 ग्राम अनबुझा चूने को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने को कहा है। और इसके बाद 10 से 12 दिनों के बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे एग्रामिन मल्टीप्लेक्स या माइक्रोबिट को 400 से 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने और ओलावृष्टि से प्रभावित बगीचों में 1 किलोग्राम प्रति 200 लीटर पानी में घोल छिड़काव करने के लिए कहा गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच बुधवार को शिमला, धर्मशाला, ऊना और किन्नौर जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई। धर्मशाला में शाम के समय अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ बारिश हुई। इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऊना और शिमला में भी शाम को बारिश हुई। उधर किन्नौर के मलिंग नाला में देर शाम तक भूस्खलन होने से रिकोंगपियो काजा सड़क यातायात के लिए बंद हो गई है। रामपुर के जूरी में तेज अंधड़ से मकान की छत भी उड़ गई। आसमान से ड्रोन दिखाएगा रास्ता, जमीन पर रोबोट बचाएगा जिंदगी। इस चुनौती से लड़ने के लिए आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने ड्रोन और ग्राउंड रोबोट को ऐसी स्वायत्त रोबोटिक जोड़ी विकसित की है जो आपदा के बीच फंसी जिंदगी को तलाशने और राहत पहुंचाने का काम बिना मानव हस्तक्षेप से कर सकती है।

दो के नतीजों में छाए प्रदेश के होनहार। सीबीएसई की ओर से घोषित जमा दो की परीक्षा परिणामों में हिमाचल के होनहारों ने भी दबदबा कायम किया है। शिमला समेत प्रदेश भर के स्कूलों का परिणाम सराहनीय रहा है और अधिकतर विद्यार्थियों ने 95% के ऊपर अंक हासिल कर स्कूल और सूबे का नाम भी चमकाया है। जवाहर नवोदय विद्यालय डुंगरी में संभाग स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता बुधवार को संपन्न हुई। समापन समारोह में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर और बतौर मुख्य अतिथि, जबकि विजय ठाकुर और एडीपीओ राजेंद्र शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यालय के उप प्राचार्य समरजीत भाटिया ने 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार प्रवेश परीक्षा आधारित सभी पाठ्यक्रमों और मेरिट आधारित पाठ्यक्रमों के लिए अब 15 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने विद्यार्थियों के आंदोलन और ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए 12 मई से प्रस्तावित स्नातकोत्तर पीजी परीक्षाओं को स्थगित कर नया परीक्षा कार्यक्रम जारी किया है। तो ये तो था हिमाचल डायरी का आज का अंक। अब अपनी रेडियो हमसफर शिवाली को दे इजाजत, नमस्कार। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:35 हुए हैं। अब से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

0: प्रणव विश्वास हंसिकाई और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था राजनीति और इस गीत को स्वानंद किरकिरे ने लिखा था और शांतनु मोइत्रा ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाज़ों में आप सुन रहे थे ये साली जिंदगी है का फिल्म का गीत, इसे संगीत से संवारा था निशात खान ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान

0: सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा ब्रेक।

फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। इरशाद कामिल का लिखा हुआ रांझणा फिल्म का गीत आप

रंजनम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ें थी जावेद अली, कीर्ति सरगाथिया, और इसे इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था। ए आर रहमान ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लुटेरा फिल्म का गीत, मोनाली ठाकुर की आवाज़।

मोनाली ठाकुर की आवाज में आप सुन रहे थे लुटेरा फिल्म का गीत, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। लीजिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए डंकी फिल्म का गीत, अरिजीत सिंह की आवाज। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, प्रीतम का संगीत।

0: दंगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, अरिजीत सिंह की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, प्रीतम का संगीत था।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

ब्रेक के बाद आपको सुनवा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और राम लक्ष्मण की आवाजें हैं, देव कोहली के बोल हैं और राम लक्ष्मण का संगीत।

निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या का आज जन्मदिवस है। जन्मदिवस पर उन्हें विनम्र नमन। उनकी बैनर तले बनी फिल्मों में मैंने प्यार किया, प्रेम रतन धन पायो, हम आपके हैं कौन, विवाह जैसी सुंदर सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने परिवारों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। आज का आपको याद दिला दें कि आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक राजकुमार बड़जात्या पर। प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाजें हैं मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की।

इरशाद कामिल के बोल आपने सुने, हिमेश रेशमिया का संगीत था। ये गीत आप सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो फिल्म से।

तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम एक था टाइगर।

तरन्नुम मलिक मोहित चौहान की आवाज़ों में एक था टाइगर फिल्म का गीत। आप सुन रहे थे, मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब फिर वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत, और आपको अब सुनवा रहे हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गाना। विशाल मिश्रा और तुलसी कुमार की ये आवाजें।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:20 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को दी मंजूरी। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज। कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें होंगी आमने सामने। और हमीरपुर के नादौन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा विकसित। होटल निर्माण और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को मंजूरी दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। कोल भारत में करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है। वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपये का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान गति पकड़ने लगा है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नगर निगम और शहरी निकायों के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज धर्मशाला में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इसमें धर्मशाला के विकास के लिए आगामी रोडमैप पेश किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर आज कांगड़ा और धर्मशाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों में आज व कल नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन 7, 8 व 11 मई को भरे गए थे, जिनकी जांच 12 व 13 मई को हुई। नामांकन पत्रों की जांच में 742 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: एचसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पूर्व बीते 11 मई को पंजाब और दिल्ली के बीच मैच खेला गया था, जिसमें मेजबान पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। पंजाब के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहने के लिए टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। मुकाबले को लेकर धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। यह प्रश्नोत्तरी अगले महीने आयोजित होने वाले सीमावर्ती ग्राम सहभागिता कार्यक्रम में युवाओं की भागीदारी के लिए चयन का पहला चरण है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो

0: शिमला एक्स हैंडल एट द रेट AIR न्यूज अंडर स्कोर शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमीरपुर जिला का नादौन क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित हो रहा है, जिसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। होटल निर्माण से नादौन और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन रूट और शिमला मेटोर फोर लाइन नेशनल हाईवे एवं अटारी हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे के जंक्शन पर ब्यास नदी के किनारे स्थित नदौन कस्बे को देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नदौन शहर के अंतर चौक पर लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के आधुनिक होटल का निर्माण कार्य जोरों पर है। इस होटल के निर्माण से नदौन और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नदौन में केवल होटल का निर्माण ही नहीं शुरू करवाया, बल्कि रिवर राफ्टिंग एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में होने वाली पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। यह रोक प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए लगाई गई है। आयोग के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान सरकार ऐसा कोई बड़ा निर्णय या घोषणा नहीं कर सकती जिससे मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़े। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए HRTC की करीब 400 बसें चुनावी ड्यूटी पर लगाई जाएंगी। राज्य चुनाव आयोग ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर बसों की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने निगम प्रबंधन से चुनावी ड्यूटी पर भेजी जाने वाली सभी बसें अच्छी स्थिति वाली भेजने को कहा है, ताकि दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी से मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो। वहीं दूसरी तरफ HRTC ने भी आयोग से बसों की एवज में कुल राशि का 50% एडवांस जमा करवाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2026 या अगले आदेश तक चीनी सहित खांड, सफेद चीनी और परिष्कृत चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार चीनी निर्यात नीति को प्रतिबंधित से निषेध कर दिया गया है। यह प्रतिबंध यूरोपीय संघ और अमेरिका को CXL तथा TRQ कोटा अग्रिम प्राधिकरण योजना और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, KNH शिफ्ट करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को नोटिस जारी कर पूछा क्यों लिया फैसला, रिपोर्ट तलब। पंजाब केसरी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन के हवाले से लिखता है, नीट का पेपर लीक होना, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, लोकभवन बना ईंधन संरक्षण क्षेत्र, पेट्रोल फ्री संडे लागू। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से सुर्खी दी है, केंद्र के तंग करने से नहीं डगमगाएंगे हौसले, दैनिक जागरण का शीर्षक है। मुख्यमंत्री का आश्वासन, जुलाई में होगी JCC, अगस्त में मिलेगी DA किस्त। दैनिक भास्कर की एक खबर है, कैंटोनमेंट क्षेत्र की जमीन पर केंद्र का बड़ा फैसला, राज्य सरकार की मांग खारिज, रक्षा मंत्रालय अपने पास रखेगा मालिकाना हक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को दी मंजूरी। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज, कांग्रेस आज अपना घोषणा पत्र करेगी जारी। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में IPL मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीमें होंगी आमने सामने। और हमीरपुर के नादौन क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से किया जा रहा विकसित, होटल निर्माण और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बल। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
2: आकाशवाणी शिमला FM शिमला 103.7 MHz और आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र पर आप सुन रहे
3: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 होने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAHK के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई ये फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही। पहला

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। यह फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। यह फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं, जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए, हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: राजकुमार बड़जात्या का 21 फरवरी 2019 को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने पारिवारिक फिल्मों की अपने परिवार की परंपरा का निर्वहन करते हुए भारतीय दर्शकों के लिए अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का।
1: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10 बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। बैठक के दूसरे दिन ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पिछली बैठक 26 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के दौरान हुई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत ने 2026 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में की थी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। पिछले 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की ये दूसरी मुलाकात होगी। दोनों नेताओं की पिछली बैठक जनवरी में नई दिल्ली में हुई थी। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
2: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ये जानकारी दी। ये प्रतिबंध यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रूपये प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रूपये और तिल के लिए 500 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी है। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इस नौसेना की संचालन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की भी समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने बंगाल की खाड़ी में पूर्वी बेड़े की तैयारियों का भी जायजा लिया। आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक है। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश, धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में कल 60 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लघु वार्ता।

आज की इस लघु वार्ता में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की इस लघु वार्ता में मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हमसफर शिवाली। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक परिवेश। ये वायु, जल, भूमि और वन्य जीवों को हानिकारक मानवीय गतिविधियों से बचाना और उनका बुद्धिमानी से प्रबंधन करना है। भारत में 1986 का पर्यावरण संरक्षण का अधिनियम के तहत ये एक कानूनी दायित्व है जो पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके प्रमुख उपाय हैं वृक्षारोपण, अधिक से अधिक पेड़ लगाना क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अभी अवशोषित करता है, जल संरक्षण से पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है, वर्षा जल संचय से पानी की बर्बादी को भी कम करना, 3R का उपयोग करें यानी कि रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल का इस्तेमाल करें, कम करें, रिड्यूस पुनः उपयोग करें, रीयूज और पुनर्चक्रण करें यानी कि रिसाइकल करें, प्लास्टिक पर रोक लगाएं, पॉलीथीन मुक्त अभियान और सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग जरूर करें, ऊर्जा की बचत करें, सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना बहुत जरूरी है। अनुच्छेद 48A के अंतर्गत राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। केंद्र सरकार को प्रदूषण कम करने और पर्यावरण सुधारने के लिए कड़े नियम बनाने का अधिकार देता है। प्रदूषण के कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है और पर्यावरण का संरक्षण ही जीवन का संरक्षण है। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार हैं वायु, जल और मृदा, मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। परी प्लस आवरण के संयुक्त से बनता है परी का आशय चारों ओर, उसका आवरण का आशय परिवेश है। दूसरे शब्दों में कहें तो पर्यावरण और वनस्पतियां, प्राणियां, मानव जाति सहित सभी सजीवों और उनके साथ संबंधित भौतिक परिसर को पर्यावरण कहते हैं। वास्तव में पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव और उसकी विविध गतिविधियों के परिणाम सभी का समावेश रहता है। विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति, नए आविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज का मानव प्रकृति पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना चाहता है और इस कारण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वैज्ञानिक उपलब्धियों से मानव प्राकृतिक संतुलन की उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है और दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण की तीव्र गति से जहां प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त कर रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति के बहुत सारे दोहन के कारण न केवल मानव जाति को बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों को ऐसे वातावरण में धकेल दिया है जहां स्वस्थ जीवन की मात्र कल्पना कर सकते हैं। बहुत सारे नए रोग जो प्रकृति का बहुत दोहन करने में समाज में उपजे हैं, मानव को अत्याधुनिकरण का दिखावा करने का परिणाम स्वरूप प्रकृति की ओर से भेंट मिल रही है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन और इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है।

निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है और इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1952 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए बहुत सारे उपाय और सुझाव दिए गए। पर्यावरण के संरक्षण से ही धरती पर जीवन का संरक्षण हो सकता है, अन्यथा मंगल ग्रह और आदि ग्रहों की तरह धरती का जीवन चक्र भी समाप्त हो जाएगा।

पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं जो अतीव घातक हैं, जैसे आणविक विस्फोटों से रेडियोधर्मिता का आनुवांशिक प्रभाव, वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, भूक्षरण और ऐसे घातक दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव के रूप में जल, वायु, परिवेश को दूषित होना और वनस्पतियों का नष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों से आक्रांत होना देखने को मिल रहा है, बड़ी कारखानों से विषैला अपशिष्ट बाहर निकलना और प्लास्टिक के कचरों से प्रदूषण की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य जरूरत यानी कि जल को प्रदूषण से बचाना होगा। कारखानों का गंदा पानी, घरेलू गंदा पानी, नालियों में प्रवाहित मल, सीवर लाइन का गंदा निष्कासित पानी और हमारे नजदीकी नदियां समुद्र में गिरने से रोकना होगा। कारखानों के पानी में हानिकारक रासायनिक तत्व घुले रहते हैं जो नदियों के जल को विषाक्त कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जलचरों के जीवन को संकट का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उसी प्रदूषित पानी को सिंचाई के काम में लगाया जाता है, जिससे उपजाऊ भूमि भी विषैली हो जाती है। उसमें उगने वाली फसल सब्जियां भी पौष्टिक तत्वों से रहित हो जाती हैं, जिनके सेवन से अपशिष्ट जीवननाशी रसायन मानव शरीर में पहुंचकर खून को विषैला बना देते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर हम अपने कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आवश्यक है कि बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा का समुचित ज्ञान समय समय पर देते रहें। अच्छे और महंगे ब्रांड के कपड़े पहनने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका स्वास्थ्य, जो हमारा भविष्य और उनकी पूंजी है। आज वायु प्रदूषण ने भी हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाई है। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के एक चुनौती है। माना कि आज मानव विकास के मार्ग पर अग्रसर है, परंतु बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से लगातार उठने वाला धुआं, रेल और नाना प्रकार के डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के पाइपों से इंजनों से निकलने वाली गैस, धुआं जलाने वाला हाईकोक, एसी, इन्वर्टर, जनरेटर से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हर क्षण वायुमंडल में घुलते रहते हैं। इससे वायु प्रदूषण सर्वव्यापक हो चुका है। सही मायने में पर्यावरण पर हमारी भविष्य आधारित है, जिसकी बेहतरी के लिए ध्वनि प्रदूषण को ऊपर भी ध्यान देना होगा। अब हाल ही में महानगरों में नहीं बल्कि गांवों तक में लोग ध्वनि विस्तारकों का प्रयोग करने लगे हैं। बच्चे के जन्म की खुशी, शादी पार्टी में सभी डीजे एक आवश्यकता समझी जाने लगी है। जहां गांवों को विकसित करके नगरों से जोड़ा गया, वहीं मोटरसाइकिल और वाहनों की चिल पांव महानगरों के शोर को भी मुंह चढ़ाती नजर आती है। औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के कोलाहल ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया। इससे मानव की श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, ध्वनि प्रदूषण का मस्तिष्क पर भी घातक प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि तीनों ही हमारे फूल जैसे बच्चों के स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। ऋतु चक्र का परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ता हिमखंड को पिघला रहा है। सुनामी, बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि या अनावृष्टि जैसे

दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखते हुए अपने बेहतर कल के लिए समस्त विश्व में पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो ज़रूरी है हम अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए सोचें और इसके ऊपर ध्यान दें। तो ये तो थी हमारी आज की लघु वार्ता। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 10:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पंजाबी फ्लेवर।

कार्यक्रम पंजाबी फ्लेवर सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हमसफर शिवाली। देखिए, कुछ नए पुराने गीतों के साथ हाजिर हैं आपका ये प्रोग्राम लेकर पंजाबी फ्लेवर। आपको नचाने के लिए, आपके साथ झूमने के लिए तैयार हैं हम। और पहला पंजाबी फ्लेवर आप सभी के लिए हमारे रेडियो सेट पर।

हरमीत सिंह दी आवाज़ में अभी हमने आपको ये सुनवाया पंजाबी गीत। कार्यक्रम पंजाबी फ्लेवर इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।

नूर जहाँ की आवाज़ में अभी हमने आपको ये गीत सुनवाया। पंजाबी फ्लेवर कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।

0: Young Army.
1: कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हम आपको पूजा के मिस पूजा की आवाज में सुनाने जा रहे हैं।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है। इस समय हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग।

कार्यक्रम लोक रंग सुनने वाले हां दिया सारिया श्रोताओं जो मेरा यानी कि शिवाली दा प्यार भरा नमस्कार दिखो श्रोताओं वक्त हुई है कार्यक्रम लोक रंग दा करना इस कार्यक्रम चाह सुना दे तो हां जो प्यारे प्यारे लोक गीत दा लोक गीत सौगी कर दे तो हां दा मनोरंजन दा चली कार्यक्रम दा पहला लोक गीत तो हां जो हां सुनाई देंदे ने विजय भंडारी दी आवाज़ च

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11 बजने को हमसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी की शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन

0: में समृद्धि आएगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों में आज व कल नाम वापस लिए जा सकेंगे। कल 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन 7, 8 व 11 मई को भरे गए थे, जिनकी जांच 12 व 13 मई को की गई। नामांकन पत्रों की जांच में 742 नामांकन रद्द किए गए हैं। अब 85,462 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होंगे। प्रदेश में नगर निगम व स्थानीय शहरी निकायों सहित पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। नगर निगम और शहरी निकायों के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता आज धर्मशाला में चुनाव प्रचार करेंगे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी अपना घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इसमें धर्मशाला के विकास के लिए आगामी रोडमैप पेश किया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों, सम्मेलनों, जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर आज कांगड़ा और धर्मशाला में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला होगा। यह मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: एफसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पूर्व बीते 11 मई को पंजाब और दिल्ली के बीच मैच खेला गया था, जिसमें मेजबान पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। पंजाब के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। मुकाबले को लेकर धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में होने वाली पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। यह रोक प्रदेश में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव को देखते हुए लगाई गई है। आयोग के अनुसार चुनाव अवधि के दौरान सरकार ऐसा कोई बड़ा निर्णय या घोषणा नहीं कर सकती जिससे मतदाताओं या चुनाव प्रक्रिया पर प्रभाव पड़े। हमीरपुर जिला का नादौन क्षेत्र पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित हो रहा है, जिसके लिए लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस होटल के निर्माण से नादौन और इसके पास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन रूट और शिमला मेटोर फोर लाइन नेशनल हाईवे एवं अटारी हमीरपुर मंडी नेशनल हाईवे के जंक्शन पर ब्यास नदी के किनारे स्थित नदौन कस्बे को देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में नदौन शहर के अंतर चौक पर लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के आधुनिक होटल का निर्माण कार्य जोरों पर है। इस होटल के निर्माण से नदौन और उसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बल मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नदौन में केवल होटल का निर्माण ही नहीं शुरू करवाया, बल्कि रिवर राफ्टिंग एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए एचआरटीसी की करीब 400 बसें चुनावी ड्यूटी पर लगाई जाएंगी। राज्य चुनाव आयोग ने निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर बसों की मांग की है। निर्वाचन आयोग ने निगम प्रबंधन से चुनाव ड्यूटी पर भेजी जाने वाली सभी बसें अच्छी स्थिति वाली भेजने को कहा है, ताकि दुर्गम और दूरदराज के क्षेत्रों में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी से मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो। वहीं दूसरी तरफ एचआरटीसी ने भी आयोग से बसों की एवज में कुल राशि का 50% एडवांस जमा करवाने की मांग की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार,
3: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:05 हुए हैं, अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप सुनेंगे।

0: ये विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: ये सुंदर सा नगमा लिया है हमने कागा एल्बम से, मिर्जिया डेयर टू लव इस एल्बम का नाम है। कौशिकी चक्रवर्ती ने इसे गाया है, गुलजार ने इसे लिखा है और शंकर एहसान लॉय ने इसे संगीतबद्ध किया है।

द खजाना कॉन्सर्ट अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए इस प्यारे से नगमे को हम सुन रहे थे। आइए सुनते हैं अगला नगमा। कार्यक्रम रंग तरंग में बड़ा खूबसूरत सा है, जिसे लिया गया है यूनिक जगजीत सिंह एल्बम से, जिसे जगजीत सिंह ने गाया है और उन्होंने ही संगीतबद्ध किया है। सहरी भोपाली ने इसे लिखा है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं एहसास एल्बम से तलत अजीज के द्वारा संगीतबद्ध किए गए और गाए गए सईद राही के द्वारा लिखे गए इस प्यारे से नज्म को, और सुनते हैं ये प्यारी सी नज्म।

यार का दीदार चाहिए एल्बम से राम शंकर की आवाज़ में असीर बुरहानपुरी ने इसे लिखा और दीपक पंडित ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा। अनफॉरगेटेबल ट्रीट आशा भोसले एल्बम से आशा भोसले की आवाज़ में फानी बदायूनी ने इसे लिखा और जयदेव ने इसे संगीतबद्ध किया।

हम सुन रहे थे एल्बम प्यार प्यार का पहला खत से ये नगमा जगजीत सिंह की आवाज़ में, जगजीत सिंह के ही संगीत के साथ। इसे लिखा है हस्ती ने।

0: हम सुन रहे थे गुलदस्ता अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए अमीर हनीफ के बोलों को। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सुगम संगीत कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हमसफर शिवाली।

0: श्रोताओं, वक्त हो चला है एक छोटे से एक मर्श ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद लौटेंगे और सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम का अगला गीत।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में।

0: कार्यक्रम सुगम संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। श्रोताओं भक्तों चला है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद लौटेंगे और सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम का अगला गीत।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत करते हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: कार्यक्रम सुगम संगीत, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हमसफर शिवाली। और जैसा कि आप जानते हैं इस गीत की, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम देशभक्ति गीत के साथ। तो आइए सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का पहला गीत।

0: मिलता संदेश लखनऊ जाने वाली बिस्मिल का संदेश।
1: रंग दे बसंती फिल्म से अभी मैंने आपको गीत सुनवाया और अगला गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म से।

दिल का रिश्ता फिल्म से अभी मैंने आपको गीत सुनवाया अलका याग्निक की आवाज में। कार्यक्रम सैनिकों के लिए इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।

दिल चाहता है फिल्म से अभी मैंने आपको गीत सुनवाया शान और कविता सुब्रमण्यम की आवाज़ों में। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं सैनिकों के लिए। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दोस्ताना फिल्म से। इस गीत को गाया है विशाल दादलानी और शिव घोषाल ने।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं काइट फिल्म से, और इस गीत को गाया है केके ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजने को है, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन, और आज की इबारत मैं आप सबके साथ पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ श्रोताओं ने इस इबारत को ना पढ़ा हो क्योंकि वो फेसबुक पर ना हो। तो चलिए चलते हैं उस इबारत की ओर। की हमने जो इबारत आपको भेजी है वो ऐसी है।

0: है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कहा कि डॉन पकड़ में नहीं आता। तभी उसी ने मुस्कुराकर कहा, आपके पैर बहुत हसीन हैं। तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत में तारीफ भी एक कला होती है, लेकिन मोहब्बत की दुनिया इतनी सीधी कहाँ है। कभी तो ये चाकू सी है, हाथ कट जाता है, कभी दिल को भी चोट लगती है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितने अपने मिले और कितने पराए, या कहूँ कि जिंदगी की भीड़ में जब लोग पूछते हैं कितने आदमी थे, तब अपने अपने हौसले गिनकर बता देती हूँ। और कभी जीवन में लोग नहीं मिलते हैं और देते हैं तारीख पे तारीख, पर हम तो हर हाल में खुश हैं। मुस्कुराकर कहते हैं कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं भीड़ लग जाती है, जीतते जाते हैं पर डर लगता है मृत्यु से। तो मन कहता है बाबू मुशाय ने की बहुत अच्छी बात लिखी है कि सच्ची मोहब्बत को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, पर वह तो अनुभव करना होता है। भोजन में नमक की तरह जो दिखाई नहीं देता पर होता है। कितनी बढ़िया गंभीर बात हमारे श्रोता ने लिखी है। और हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने एक बात लिखी है कि आज की भारत केवल फिल्मी संवादों का संग्रह नहीं है, बल्कि सिनेमा के चश्मे से जीवन को देखने का एक खूबसूरत नजरिया है। यह याद दिलाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, इंसान को अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए, क्योंकि जीवन की कहानी का सुखांत तो होना अभी बाकी है। बिल्कुल सही हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की भारत में कई फिल्मों के डायलॉग शामिल किया गया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिन फिल्मों के डायलॉग शामिल किए गए हैं उन्हीं फिल्मों के गाने शायद बज सकते हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैंने जिन फिल्मों के संवादों को पहचाना है उनके नाम है दो बदन, डॉन, पकी पाकीज़ा, वक्त, शोले, दामनी, खाली अमर, प्रेम, आनंद, मेरे महबूब। हो सकता है और भी कुछ फिल्मों के डायलॉग हों। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, सही बात है, क्यों करते हैं पता नहीं। पर हमारे श्रोता लिखते हैं, भारत के अनुरूप संभावित गाने हैं मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, और उन्होंने कई सारे गानों के बारे में लिखा है। तो चलिए हम देखते हैं इनमें से क्या हो सकता है। हाँ, आपने एक बात तो बहुत अच्छी पकड़ी, हमारे एक श्रोता ने तो 15 लिखते हैं, हम जहाँ से खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होती है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आज इबादत में मुझे, इबारत में मुझे फिल्म डॉन फिल्म नज़र आ रही है। अच्छा, आपकी पसंद भी आपने हमको बता दी, बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यह भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि हमसे हमारे इश्क का अंदाज पूछ रहे हैं और हमने भी हंसकर कह दिया, रिश्तों में तुम्हारे बाप लगते हैं। तभी पलट कर उन्होंने सादगी से कहा, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। उस पल समझ में आया, मोहब्बत में तकरार भी एक अलग सुकून देती है, मगर इस दिल की दहलीज का कदम रखना इतना आसान नहीं है। यहाँ कभी जज्बात कांच की तरह चुभते हैं, कभी खामोशी भी जान ले लेती है। क्या खूबसूरत बातें आपने लिखी हैं। और जब इतना अच्छा लिखा है तो हम चलते हैं हमारे उसी इबारत की तरफ। और हमने सबसे पहले लिखा है कि वो हमारी मोहब्बत के बारे में पूछ रहे थे और हमने कह दिया डॉन को पकड़ना डॉन पकड़ में नहीं आता। और इससे इबारत, इसी इबारत से अगर हम समझ लें तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये गीत यहाँ पर होने वाला है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। ये तो मैं मेरी पसंद से आपको एक गीत सुनवा दूंगी और हो सकता है यही मांग आपकी भी हो, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं इनमें से ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसे बहुतायत में आप प्रयोग किया करते हैं? जल्दी से मुझे संदेश भेजिएगा, ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसका उपयोग आप बहुत बार करते हैं और लोग उस बात पर, उस आपके उस अंदाज पर खुश भी हो जाते हैं। तो जल्दी से ये बात हमें बताएं। और हमारे श्रोताओं ने इस बारे में लिखा है, एक एक अलग अलग बातें लिखी हुई हैं डायलॉग्स के बारे में लिखा है। तो चलिए हम ये गीत बढ़िया सा सुनते हैं, और अगर आपकी पसंद का है तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि आपकी और हमारी पसंद मिलती है।
1: अरे तुम का बताई भैया हमरा हाल का है। निकले थे हम हलवा खाने, मुँह ही जल गया है।

0: भाजम भात के हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भागे कभी इधर भागे।
1: अरे तुम का बताई भैया,

0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए।

ये गीत जो हम सुन रहे थे वो था डॉन फिल्म से। इसके पहले भी हमने डॉन फिल्म की एक झलक सुनी। ऐसे कई गीत आए पान बनारस के ऊपर, जिनमें से सबसे बेहतरीन हम सबका पसंदीदा गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ अनजान फिल्म। अनजान के बड़े प्यारे से बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है। और हम बात कर रहे हैं सुरीला सफ़र कार्यक्रम में बड़े सुंदर से गीतों के बारे में और बड़े सुंदर से डायलॉग्स के बारे में। तो आपने हमें बहुत सारे डायलॉग्स भेजे हैं, कौन कौन से आपको पसंद हैं या क्या आप सुनना पसंद करते हैं तो या कहना पसंद करते हैं, और कहते कहते लोगों को रिझा लेते हैं। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उन दिनों की याद आती है जब टेप रिकॉर्डर में मनपसंद फिल्मों के डायलॉग सुना करते थे और दोहराते थे। और हमारे श्रोता ने हमें बड़ी अच्छी सलाह लिखी है।

0: आपके पांव बहुत हसीन है, अरे दीवानों मुझे पहचानो, मैं हूँ डॉन। जीवन जीने का भी बहुत हसीन बनाया जा सकता है, बस आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और हम सफर का साथ हमेशा बहुत मायने रखता है। हमारे श्रोता लिखते हैं आई हेट टियर पुष्पा, इन्हें यह लिखना था। और पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त अपने फ्रेंड से मिलते थे, कुछ बात हो जाती थी तो हम बोलते थे पिक्चर अभी बाकी है, और हमारी फ्रेंड हम हमारा दिल दिखाई देते थे एंड कहते थे आई हेट टीयर्स, मतलब मैं जी, हम स्कूल में जो थे वो सारे डायलॉग्स बोला करते थे, मर जावा गुड़ खा के। हाँ, ये डायलॉग सभी लोग बोला करते हैं ना, मर जावा गुड़ खा के। गुड़ खा के कैसे मर सकते हैं, गुड़ खा के तो खुशियाँ होती हैं, ये बात भी, ये डायलॉग भी हमारे श्रोता बोला करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्म शक्ति का संवाद, इनकी बातों में आकर किसी ऐसे रास्ते पर मत चले जाना जहाँ से चाहो तो भी वापस ना आ सको। यह संवाद दिलीप कुमार ने अमिताभ को समझा कर कहा था। ये भी बात सही है। और हमारे एक और श्रोता ने पसंदीदा डायलॉग लिखा है, जिनके मकान शीशे के होते हैं के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। ऐसे कितने सारे डायलॉग्स हैं ना जो हमें पसंद हैं। अभी इन डायलॉग्स के बारे में हम और चर्चा करेंगे, पर सुनते हैं ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है सुरीला सफर। और सुरीले सफर में हम चल रहे हैं डायलॉग्स के साथ, वो डायलॉग्स जो कहीं ना कहीं आपके जेहन में, मेरे जेहन में कहीं ना कहीं बस गए हैं। और बस ऐसे गए हैं कि चाहे जब चाहे में ही निकल आते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हम बहुत अच्छा सफ़र इसमें चल रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि आज की इबारत महज शब्दों का समूह नहीं बल्कि बॉलीवुड के सुनहरे दौर और हिंदी फिल्मों के कालजयी संवादों के माध्यम से बुनी गई जीवन के प्रति एक दार्शनिक और बेबाक अभिव्यक्ति है। यह इबारत एक ऐसी शख्सियत को बयां कर रही है जो मजबूत है पर भावुक भी, निडर है पर संवेदनशील भी, और जो जीवन की हर परिस्थिति में एक सिनेमैटिक अंदाज में जीती है। यह हार ना मानने की एक खूबसूरत दास्तान रचती है। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है। और हमारे श्रोता इसी बात में एक और बात लिखते हैं कि आप हमारे एक मेडिकल स्टोर की शॉप है, जब भी कोई हमारे बहुत पुराने ग्राहक शॉप पर आते हैं तो हम उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग आओ ठाकुर ऐसा बोल देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। कितनी अच्छी बात है ना, हमारे शब्दों से ही अगर किसी के जीवन में

खुशियां आ जाए तो क्या कहना है। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, कई पुरानी फिल्मों के डायलॉग हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर है, जैसे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, कितने आदमी थे, बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा, ऐसी सारी बातें हमारे श्रोताओं ने बताया है। और हमारे श्रोता ने लिखा है, कभी कभी यह डायलॉग हम उपयोग में लाते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जेब में फूटी कौड़ी नहीं और चला महलों के ख्वाब देखने, ये सारी बातें हैं और बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संवादों के लिए लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं कुछ फिल्मी संवाद को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है, जिनमें एक संवाद है, तुमने सपने देखे हैं, सपनों को टूटते नहीं देखा। दूसरा है, जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते। और तीसरा है, मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। क्या बात है। हमारे श्रोता लिखते, जरा सी परेशानी आती है तो हम कहते हैं साला ये दुख काहे को ख़त्म नहीं होता। मतलब अगर हर बार भोजन यानी खाना पकाते हुए भी LPG ख़त्म हो जाए तो भी यह डायलॉग दे ही देते हैं। क्या बात है। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और शायद कुछ संदेश मैं पढ़ पाऊँ या ना पढ़ पाऊँ मुझे क्षमा कीजिएगा, पर ये जो अगला गीत है ना, इसके लिए हमारे श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि मोहब्बत में तारीफ नमक के माफिक होनी चाहिए, ज़रूरी भी है और ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। तारीफ पार्टनर को उसकी खूबसूरती अहमियत का एहसास दिलाती है। हम अक्सर अपनी खूबियों को नहीं देख पाते, पर जब कोई चाहने वाला तारीफ करता है तो हम उसकी नज़र से देखने लग जाते हैं, जिससे स्वयं आत्ममूल्य बढ़ता है और रिश्ते में सुकून आ जाता है। अगर तारीफ झूठी हो तो प्रेम नहीं बल्कि सौदाबाजी बन जाती है। सच्ची तारीफ भरोसा और अपनेपन भरोसा और अपनेपन को गहरा करती है। अक्सर प्रेम में पुरुष स्त्री की आंखों की और स्त्री पुरुष के मन की तारीफ करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन वही पुरुष स्त्री की आंखों को और स्त्री पुरुष के मन को पढ़ने की कोशिश करे, ये पढ़ ले, तो मोहब्बत किसी बाहरी सुंदरता की तारीफ की मोहताज नहीं रह सकती, बल्कि मोहब्बत की ही तारीफ हो जाती है। और एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है जो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, राजकुमार का बेहतरीन संवाद है कि आपके पैर बहुत हसीन हैं। ये राजकुमार जी का, ज़रा बताइएगा। आपके पैर बहुत हसीन हैं, इन्हें ज़मीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। ये डायलॉग पाकीज़ा फिल्म का है और उसका ही ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों का मिलान हो रहा हो। बताइएगा, अगर आपकी पसंद और मेरी पसंद दोनों की पसंद मिल गई है तो ज़रूर हमें सूचना दीजिएगा और इतना सब बस बता दीजिएगा कि इस गीत के गीतकार कौन है। और साथ में ये बताइएगा, जो प्रश्न में चल रहा है उसको तो चलने ही दीजिए, कि आपका पसंदीदा डायलॉग कौन सा है। और उसके साथ ये बताइएगा कि कभी कोई डायलॉग किसी मित्र ने, किसी शिक्षक ने, कभी माँ ने आपको ऐसे ही अनजाने में सुना दिया हो और आप हंस हंस के लोटपोट हो गए हो जहाँ पर आपकी पिटाई हो रही थी या डांट पड़ रही थी, ज़रूर बताइएगा। सुनिए ये खूबसूरत सा नगमा, बताइएगा इसके गीतकार कौन हैं।

हम सुन रहे थे पाकीज़ा फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलाम मोहम्मद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं, तो हमारे श्रोताओं से कहाँ क्या छुपा है, बहुत अच्छे से उन्होंने उत्तर दिया कि कैफ़ी आज़मी ने इस गीत को बोल दिए हैं। और गुलाम मोहम्मद ने कितना खूबसूरत संगीत दिया है ना। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रेलगाड़ी की सीटी आकर्षण का केंद्र है, गाने के अंत में सुनाई देती है। हाँ, हमने भी सुनी इन्हीं हेडफोन्स के जरिए विविध भारती के स्टूडियो से। आपने भी सुनी होगी अपने अपने रेडियो हैंडसेट पर। और हमारे श्रोताओं को बड़ा पसंद आ रहा है ये गीत, तो बहुत खुशी की बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, गीत रूह को छू लेने वाला एक एहसास है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो जब हमारे पसंद के गीत हैं, हमारे श्रोता लिखते हैं, शबे आखिरी शबे इंतज़ार आखिर कभी होगी मुख्तसर भी, ये चिराग बुझ रहे हैं मेरे साथ जलती जलती। क्या बढ़िया शेर उठाया है आपने गीत से। हमारे श्रोता लिखती हैं, हमने पूछा था आपसे कि आपको कौन सा ऐसा डायलॉग है जो आपके घर वाले आपको देते हैं तो आप मार खाते खाते या

और खाते खाते हंसने लगते हैं तो हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी हमेशा मुझे डांटती है, कभी कभी जब मारने लगती है तो मैं कह देती हूँ डॉन को ना कभी दर्द नहीं होता, तो मम्मी हंसती है, फिर क्या ना एक और डायलॉग बोल देती हूँ, हारने वाले को बाजीगर कहते हैं। फिर हम और वो और उनकी माँ दोनों बहुत हंसते हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपकी माँ आपके साथ आपको बहुत पिटाई करती हैं और बहुत सारा प्यार भी करती हैं, इन दोनों को संभाल कर रखिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे लिखे हैं, हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के इस सुरीले सफ़र में डायलॉग की बात हो रही है तो उन्हें जो डायलॉग पसंद है उन्होंने लिखे हैं, चल तनु बसंती आज चल धनो, यहाँ तनु नहीं यहाँ धनो होना चाहिए, चल धनो आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है, तुम्हारा क्या नाम है बसंती, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा था, मेरे पास गाड़ी है बंगला है पैसा है, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है, आओ महारथी आओ, ये सारे डायलॉग ये बहुत प्यार से बोलते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बोला कि आज का मेरा खुद का डायलॉग है कि अपुन सफ़र के साथ सफ़र यानी डबल सफ़र करता है, हम विविध भारती मुंबई के सुरीला सफ़र के साथ साथ ट्रेन के सफ़र का भी आनंद ले रहे हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, हम ये बात आपसे कहते हैं। और हमारे श्रोता लिखती हैं कि हमारी आदत है शांति तुम नहीं जानती ये बोलने की। हाँ ये बड़े प्यारे से डायलॉग थे ना, मीठे मीठे सुरीले सुरीले। और हमारे श्रोताओं ने जब बहुत सारे डायलॉग्स के बारे में लिखा तो हमारे एक श्रोता ने तो ढेर सारे सारे डायलॉग्स ही पहचान करके लिख दिए और उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन सारे डायलॉग अभी हम नहीं बोल सकते। हमारे श्रोता लिखते हैं, जंजीर फिल्म का एक संवाद है, जब तक बोला ना जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। और हमारे श्रोता कहते हैं, अक्सर मेरे मित्र पूछते हैं कि आपके स्वस्थ और खुश रहने का राज क्या है, उनसे मेरा यही कहना है मैं विविध भारती सुनता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, सुनते रहिए, ये डायलॉग बड़े काम का है। हमारे श्रोता ने लिखा, हमने कल रात को प्रोमो देखा फिल्मों के डायलॉग के गीत पर, सभी को नमस्कार, लेकिन आज उन्हें गोधड़ी सिल के भेजनी है तो गाने सुनेंगी, तो सुनते रहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन में जब हम घर पर बच्चे शैतानी करते थे, माँ हम सब की शिकायत पापा से करती थी तो हमारे पिताजी पूछते थे कितने आदमी थे, और अब तो हंसी आती है ये सोचकर, हाँ लेकिन उस समय तो हम सब की हालत पिटाई और डांट के डर से देखने वाली होती थी। ऐसे ही खुश रहिए क्योंकि ये डायलॉग जो है ना बड़े प्यारे प्यारे हैं। और हमारे अगला जो डायलॉग है वो बहुत खूबसूरत सी हीरोइन का डायलॉग है, तो ये गाना आप सुनिए और उस डायलॉग का जिक्र कीजिए और उसके साथ ही एक जिक्र और कर दीजिएगा कि वो अभिनेत्री कौन है, उनका वो डायलॉग कौन सा है और ये फिल्म कौन सी है। ये तीन प्रश्न मैं आपके पास रख रही हूँ, अभिनेत्री, वो डायलॉग और साथ में फिल्म का नाम, सुनिए।

हम सुन रहे थे ये गीत अमित कुमार, कविता कृष्ण मूर्ति और साथियों की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि ये गीत किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है, और बता दीजिएगा जल्दी से, और यह भी बता दीजिए कि इसके साथ में डायलॉग कौन सा है। तो हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया है कि जानी ये चाकू है, लग जाता है तो खून निकल आता है, श्रीदेवी। और फिल्म का नाम भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, चालबाज। हमारे श्रोता लिखते हैं, चुलबुली अभिनेत्री श्रीदेवी का असामयिक निधन हुआ, वो अफसोस की बात है, हम सभी उन्हें सच में याद करते हैं। और बड़ा खूबसूरत सा ये जो डायलॉग का सफ़र चल रहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब भी स्कूल के दिन अपने दोस्तों के साथ छुट्टी लेते थे या घर जाते थे, तो लिखते थे कि अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगी, जब तुम कहोगे, ये डायलॉग इनके बीच में चलता था। और हमारे श्रोताओं ने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने कई सारे डायलॉग्स के बारे में बड़े प्यार से बताया है, और श्रोता अपनी बड़ी प्यारी प्यारी कहानियाँ भी लिख देते हैं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि घर बच्चे छोटे थे, जब भी घर पर मैगी बनाते थे तो बच्चे कहते थे माम हो गए, वो खुश हुआ, और इस बात से हमारे श्रोता भी खुश हो जाते थे ये डायलॉग सुनकर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख काजोल का वो डायलॉग है पलट पलट, वो भी उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल सही बात है, यह कई लोग ट्राई करते

इस डायलॉग को हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमें ये डायलॉग अच्छा लगता है, आपकी इबारत में भी है कि बाबू मशाई ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, और सही भी है। और शोले फिल्म का डायलॉग, बसंती का डायलॉग, हाँ बाबू जी कहाँ जाओगे, बेलापुर फतेहपुर, ये डायलॉग भी उन्हें बहुत पसंद है। पर ये डायलॉग पूरा याद करना बड़ा मुश्किल है, कैसे हैं उस अभिनेत्री हेमा मालिनी ने उसे याद किया होगा। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, तो एक फिल्म धमाल का एक डायलॉग है, प्रेम चोपड़ा साहब डब्ल्यू वाली बात पर बताते हैं तो जावेद जाफरी कहते हैं कि हम कोई उसके बाप के नौकर हैं जो उसका काम कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। हमारे श्रोता लिखती हैं कि उन्हें मुगले आजम का डायलॉग बड़ा पसंद है, मेरा दिल आपका हिंदुस्तान नहीं है जिस पर आप राज कर सकें। क्या बढ़िया बात है, ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये डायलॉग। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, और अब हम आपको अगला जो प्यारा सा गीत है वो सुनवा रहे हैं। और इस फिल्म के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डायलॉग आप लिखकर भेज सकते हैं, ज़रूर भेजिएगा। और बस इतना ही बता दीजिएगा, वैसे आपको गाना सुनते ही पसंद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा इसके गायक कलाकार कौन है और फिल्म कौन सी है और किस सन में आई थी, ये बताएंगे।

हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, शोले 1975 की ये फिल्म है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, उस समय वह 8वीं कक्षा में थे, यानी आपने अपनी 8वीं कक्षा में ही शोले देख ली थी, कितने सौभाग्यशाली हैं। चलिए, हम हमारे श्रोताओं से हमने कुछ प्रश्न पूछे थे, उन सबके उत्तर हमारे पास आ रहे हैं। आज का सुरीला सफर में जुड़कर मोगैम्बो खुश हुआ क्यों मिस्टर इंडिया, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। और हमने पूछा था आपसे कि इस फिल्म के कई सारे डायलॉग शायद आपको पसंद होंगे, तो ज़रूर भेजिएगा। मौसी जी, तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि असरानी का डायलॉग, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं क्या? आप सही बात है, शंभू का दिमाग दोधारी तलवार है। प्रेम चोपड़ा का ये डायलॉग उन्हें बड़ा पसंद है, एक हाथ का पंजा कटा हुआ है तो उसके ऊपर धातु का ग्लव यानी कवच पहना हुआ है। और हमारे श्रोता लिखते हैं, यूं तो हमें बोलने की आदत तो है नहीं, चल बसंती आज धनों की इज्जत का सवाल है, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं ही। और हमारे श्रोता ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ठाकुर ये हाथ हमको दे दे, नहीं ये डायलॉग थोड़ा अलग है, ठाकुर हमका ये हाथ दे दे, क्या था सही डायलॉग आप ज़रा भेजिएगा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मरते दम तक साथ चलना है चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये गीत के साथ बोला आपने लिखा है। पार्टनर अब बोल दिया है तो देख लेंगे, ये मेरा फेवरेट है, कितना बढ़िया डायलॉग है ना। तुम क्या लाए हो धोलिया, ये मुट्ठी भर ज्वार, बाकी क्या अपनी लड़की के बरातियों के लिए रख छोड़ा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पुष्पा 8 ईयर्स मोगैम्बो खुश हुआ बड़ा पसंद है। हमारे एक और श्रोता ने बड़ा अच्छा डायलॉग दिया, मेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे ही नहीं है। अरे वो सांभा कितने आदमी थे, ये हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, हमारी इतनी बदलियों के बाद जब हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे। ठाकुर साहब, गब्बर सिंह क्या कोई बकरी का बच्चा है दो जो दौड़ा और पकड़ लिया। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कैसे हो सुरमा भोपाली। ये डायलॉग भी बड़ा अच्छा है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये सही डायलॉग है और ये डायलॉग हम कई बार याद भी करते हैं। हमारे एक श्रोता ने बसंती इनके सामने नहीं नाचना ये भी लिखा है, इतनी खामोशी क्यों है भाई, ये डायलॉग भी यहाँ पर आया है। और इसके साथ ही बहुत सारे डायलॉग्स के साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने, ये बात भी, कितने आदमी थे, ये सारे डायलॉग आपके रिपीट हो रहे हैं, कई सारे लोगों ने भेजे हैं। और इसके साथ बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग हमारे बीच में आ रहे हैं, और इसमें हमारे श्रोता ने लिखा है, जानते हो संसार का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है, बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बड़ा बड़ा खूबसूरत सा है और बड़ा दिल को कुछ कलेजे में कुछ करने वाला ये डायलॉग है। शोले फिल्म पुराने ज़माने के जेलर मूवी जितनी बार देखी उन्हें अच्छी लगी, हेमा मालिनी का सीन बहुत अच्छा है, जब कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं क्या कन्या यूके यूके, वो सारी बात जो चलती है उनमें बड़ा मज़ा आता है। तो कालिया कहता है कि दो हैं कहाँ रे फौजी नंबर दो, ये कई सारे डायलॉग जो हैं लोगों को पसंद आते हैं। तो चलिए ऐसे ही सुंदर गीत आप सुनते रहिए, और अगला जो गीत है वो हम आपको सौंप रहे हैं, बस यही करना है कि उस गीत के गायक को पहचान लेना है, और ज़रा सा पहचानिए कि ये डायलॉग कौन सा हो सकता है। डायलॉग के साथ में आप पहचान लीजिए जल्दी से वो डायलॉग कौन सा होगा और ये फिल्म कौन सी होगी।

इस गीत का एक ही अंतर हम आपको सुनवा रहे हैं क्योंकि हमें सुनवाने हैं बाकी डायलॉग के गीत भी। और इसके साथ में हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो है वो किस फिल्म से है और बता दीजिए जल्दी से, तो आपने हमें बता दिया कि दामिनी फिल्म से है और बहुत अच्छे से बताया कि ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है, और इसके साथ तारीख पे तारीख शायद इसी फिल्म का डायलॉग है। बिल्कुल सही। चलिए, ये सारे डायलॉग तो आपने बताया, आपने लिखा कि तारीख पर तारीख मिलती रही लेकिन इंसाफ नहीं मिला। माय लॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ ये तारीख। बिल्कुल सही।

आंखों में अदाएं भी हैं, और एक और बात आ जाती है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। ये डायलॉग भी इस फिल्म का है, जो कि है फिल्म कालिया। तो सुनते हैं ये थोड़ा सा नगमा।

अब हम चल रहे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम डायलॉग के साथ में, और वो डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा है। अगर आप बताएंगे कि वो डायलॉग कौन सा बचा है तो ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी हम तो आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि बाबू शाह ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और ये फिल्म कितनी खूबसूरत थी ना, किस किस ने देखी, कब कब देखी, ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी 2 दिन पहले ही इस फिल्म को देखा है, हर रोज मैं इस फिल्म को देख सकती हूँ, जीने की एक ताकत देती है। सुनते हैं यह खूबसूरत सा नगमा, और आपको जो थोड़े थोड़े गीत सुनवाए हैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कभी और किसी और रोज़ वो जो गीत रह गए हैं उन्हें पूरा सुनाऊंगी।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गीत हम सभी सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी। उन्होंने वह पूरी कविता लिख डाली, मौत तो एक कविता है, मुझाए मुझसे एक कविता का वादा है। वो पूरी कविता पढ़ने का समय तो नहीं है, जिंदगी की डोर ऊपर वाले के हाथ में किसकी डोर कट जाए ये बात है। और हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं और लिखा है कि आनंद फिल्म उन्होंने दूरदर्शन पर देखी थी और कई सारे और डायलॉग्स हम तक आए हैं। और हमारे एक श्रोता ने लिखा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छा डायलॉग दिया है और उसके साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन में, कार्यक्रम सुरीला सफर में आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स @20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुँचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व सरमा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा।

0: पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने दो दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज एनडीआरएफ के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: एनडीआरएफ को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान एनडीआरएफ के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम एनडीएमए और एनडीआरएफ ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी पेइजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
2: पेइजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह वर्ष

0: चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में चिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजेता नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की ये यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में ये वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबुधाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: हम सुन रहे थे ये गीत 12 o'clock फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी गीता दत्त की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं।

0: आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 सिर्फ विविध भारती पर।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत डिटेक्टिव फिल्म से, गीता दत्त हेमंत कुमार की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और मुकुल रॉय के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत आखिरी दांव फिल्म से आशा भोसले की आवाज़ में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा, जो कि है फिल्म अनाड़ी से। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: वफी।
1: हम सुन रहे थे मधुमति फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज़ में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अंतिम गीत और इस गीत के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप सबका कल्याण हो ये प्रार्थना करती हूँ। और सुनिए ये गीत मालिक फिल्म से, सुरैया शमशाद बेगम और साथियों की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल हैं और गुलाम मोहम्मद का है संगीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार का एंटी चिट्टा मॉडल जहां अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो रहा है, वहीं अन्य राज्यों में भी इस मॉडल की चर्चा होने लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार चिट्टा जैसे नशे से निपटने और चिट्टा तस्करी का समूल नाश करने के लिए जल्द ही एंटी चिट्टा अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। एंटी चिट्टा मॉडल के तहत प्रदेश में चिट्टे के कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, वहीं इस समस्या से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश के चार नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन व स्थानीय शहरी निकायों के लिए 17 मई को मतदान होगा। ऐसे में वोट डालने के लिए अब 3 दिन शेष रह गए हैं और इन चुनावों के लिए प्रचार अभियान भी तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आज पालमपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डो में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। इधर सोलन नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि समृद्ध शहर अभियान के तहत सोलन अव्वल स्थान पर रहा है। शांडिल ने कहा कि सोलन को सीवरेज से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है और शहर की पेयजल समस्या सहित अन्य समस्याओं का भी निपटारा किया जाएगा।
1: पूरे पूरे वार्ड देख चुका हूँ और जो लोगों का रुख है वो काफी फेवरेबल है कि भाई हम कांग्रेस की ही निगम बनाएंगे, तो अब तो हमें पूरी आशा है, हमारी जीत लगभग निश्चित है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम मंडी चुनावों के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंडी की जनता को केवल उपेक्षा, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी के प्रति हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है और 2025 की आपदा के दौरान ये पूरी तरह उजागर हो गया। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज धर्मशाला नगर निगम में चुनाव प्रचार किया और लोगों से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में जनता के पास कांग्रेस को जवाब देने का मौका है। अनुराग ठाकुर ने कहा

0: कि कांग्रेस ने सरकार बनने से पहले 10 गारंटियां दी थीं, लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे भी अधूरे रह गए।
1: जनता के पास अवसर है कि कांग्रेस को जवाब दे सके। यहाँ से 3 साल पहले जो कांग्रेस ने वायदे किए थे सरकार बनाने से पहले, 10 गारंटियां दी थी, 10 में से एक भी पूरी नहीं हो पाई। धर्मशाला स्मार्ट सिटी बनना था, उसके काम को भी पूरा नहीं कर पाए। ऐसे अनेकों वायदे जो जनता से किए थे वो अधूरे और खोखले रह गए। अब जनता के पास है वोट के माध्यम से करारा जवाब देने।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज नई दिल्ली में विश्व हिंदू पीठ के अध्यक्ष आचार्य मदन द्वारा रचित पुस्तक शारदा पीठ सती देश कश्मीर का विमोचन किया। राज्यपाल ने इस पुस्तक को जम्मू कश्मीर की पुरातन आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक विरासत का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। उन्होंने आचार्य मदन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये शोध आधारित पुस्तक शारदा पीठ के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और कश्मीर की पहचान से उसके गहरे संबंध को प्रतिबिंबित कर रही है। धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाएगा। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का ये दूसरा मुकाबला होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
2: एचसीए क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आज आईपीएल मुकाबले में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच भिड़ंत होगी। धर्मशाला में आईपीएल सीजन का यह दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। इससे पूर्व बीते 11 मई को पंजाब और दिल्ली के बीच मैच खेला गया था, जिसमें मेजबान पंजाब को हार का सामना करना पड़ा था। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा। पंजाब के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा माना जा रहा है। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए टीम को हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। मुकाबले को लेकर धर्मशाला में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद अब प्रस्तुत है कुल्लू जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक है आशीष शर्मा, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का।
4: जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह कुल्लू के ढालपुर मैदान में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने की। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। ड्रेजिंग व खनन को लेकर जिला स्तरीय कमेटी की बैठक उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू के माध्यम से नदियों में बाढ़ के खतरों को कम करने और आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य से नदी तल में ड्रेजिंग और खनन कार्यों की निगरानी के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक में उपायुक्त ने जानकारी दी कि समिति का उद्देश्य बाढ़ की रोकथाम के लिए ड्रेजिंग योग्य क्षेत्रों की पहचान करना, राजस्व दस्तावेज तैयार करना और निर्देशांक सुनिश्चित करना व ड्रेजिंग की जाने वाली सामग्री की मात्रा निर्धारित करने के लिए वन विभाग के माध्यम से स्टडी सुनिश्चित करना है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट से जुड़े मुद्दों पर द्विमासिक बैठक का आयोजन सहायक आयुक्त जयवंती ठाकुर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सुरक्षा इत्यादि संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि हवाई अड्डा सुरक्षा व खतरों से बचाव के लिए हवाई अड्डा से 10 किलोमीटर की परिधि में पक्षी गतिविधियों से मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा प्रवासियों द्वारा शाड़ाबाई में झुग्गी बनाकर ब्यास नदी में हो रहा प्रदूषण पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। देश विदेश में प्रसिद्ध बुनकर सोसाइटी भुट्टिको के सभागार में ठाकुर वेदराम जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सत्य प्रकाश ठाकुर ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति गुलाब सिंह आजाद मौजूद रहे। स्वर्गीय ठाकुर वेदराम की स्मृति में आयोजित इस समारोह में सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीलंका के डब्ल्यूईओ हैरथ को वेदराम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। जिला मुख्यालय कुल्लू में पीपल जातर मेला खूब धूमधाम से मनाया गया। 3 दिनों तक चला पीपल मेला देवता गौहरी की भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ। गौहरी देवता अपने

0: हरियाणों के साथ अपने लाओ लश्कर सहित ढालपुर मैदान में पहुंचे। यहां पर उनके स्थान पर देवता के हरियाणों ने उनकी पूजा अर्चना की और देवता ने देव रीति से मेले का आगाज किया। मेले में शिरकत करने के लिए बाहरी राज्यों से काफी संख्या में व्यापारी आए थे और मेले में जमकर कारोबार हुआ। शाम के समय लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में सांस्कृतिक संध्याओं का भी आयोजन किया गया, जहां स्थानीय कलाकारों ने अपने कार्यक्रमों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हिमाचल प्रदेश ब्राह्मण जन कल्याण सभा का साधारण अधिवेशन देव सदन कुल्लू में भारी संख्या में ब्राह्मण समाज की उपस्थिति के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिवेशन में समाज के संशोधित संविधान, वैदिक पद्धति, संस्कारों तथा सनातन धर्म की सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखने पर व्यापक मंथन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन गौतम ने की। कार्यक्रम में पूर्व सत्र न्यायाधीश डीडी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि लीला गोपाल शर्मा, भूपेंद्र गौतम सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बीते दिनों कुल्लू के ढालपुर मैदान में निरंकारी संत समागम का आयोजन हुआ, जिसमें माता सुदीक्षा महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित किया। इस समागम में पंजाब, हरियाणा, जम्मू, राजस्थान व प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और माता सुदीक्षा महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बीते दिनों लगातार बारिश होने के चलते व तापमान में गिरावट होने के कारण लोगों को एक बार फिर से ठंड का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब, प्लम सहित अन्य फलों व सब्जियों को नुकसान पहुंचा, जिसके कारण किसान और बागवान चिंतित दिखे।
1: प्रभा शर्मा से आप सुन रहे थे कुल्लू।

0: बहुत सुंदर गीत था, और जिस तरह से इस गीत में खनक थी ना, वैसे ही कुछ खनक रंगों में होती है, और रंग भी मन को मोह लेते हैं। और आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं जो चित्रकार हैं, जो अपने रंगों का जादू ना, जब वो चलाती है ना रंगों की अपनी कलम, तो वो नजर आता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और भूरी बाई, ये उनका सफ़र हमें यही बताता है चंचल, कि कला छुपाए नहीं छुपती है, वो दुनिया तक एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। इसलिए घर में कोई बच्चा हो या आप स्वयं हमारी सखी खास तौर
0: जी
1: पर, वो क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कला अगर आपके अंदर है तो उसे कहीं भी रोकिएगा नहीं, कभी दबाइएगा नहीं।
0: और ये जो अवसर है जब स्कूल के बाद बच्चों की छुट्टियां होती हैं, यही मौका उन्हें मिलता है कि उनके अंदर कोई कला है तो उसे आप उभारें, और उन्हें कोई ऐसी क्लासेस में एक्टिविटी के लिए भी आप भेज सकती हैं ताकि उन्हें खुद को जानने का अवसर मिलेगा इन
1: बिल्कुल।
0: चीज़ों से।
1: और बच्चों के साथ खुद भी क्यों नहीं, अगर आपको अब लगता है कि हाँ थोड़ा सा वक्त है,
0: जी
1: और अगर आपको मान लीजिए कि 40 पार या
0: जी
1: 45 की उम्र के पार आपको लगता है कि मैं कोई डांस क्लासिक हूँ, लेकिन मन में एक पहला ख्याल क्या आता है, अरे अब कहाँ, तो ये ख्याल आने भी मत दीजिएगा।
0: जी
1: ज़रूर अपने पास की किसी कोई क्लास, कहीं पे कुछ सिखाया जा रहा हो तो जाकर एक बार देखिएगा ज़रूर कि आप कर पा रहे हो या नहीं।
0: और 40-50 के पार तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा समय होता है। उस वक्त अधिकतर महिलाएं या पुरुष बच्चों की जिम्मेदारियों से काफ़ी हद तक मुक्त हो चुके होते हैं, क्योंकि
1: जी
0: बच्चे पढ़ लिख कर अपने नौकरी के लिए या बड़ी किसी पढ़ाई के लिए वो विदेश चले गए होते हैं, या कहीं और किसी अन्य शहर में चले गए हैं, या अपने ही शहर में वो व्यवस्थित शादी ब्याह करके या नौकरी करके सेटल हो चुके होते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा।
0: आपको जब अपने लिए समय निकालने का अब वक्त आया है तो बिल्कुल पीछे ना हटें, अपने उस शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। तो
1: बिल्कुल।
0: आज हम बात कर रहे हैं चित्रकार भूरी बाई के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक छोटा सा गाँव है पिटौर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ 1968 में। और उनके माता पिता बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आते थे और मेहनत मजदूरी का काम वो किया करते थे। पढ़ाई लिखाई भी उनकी हो नहीं पाई ज़्यादा, क्योंकि उनका जो कह सकते हैं ना कि पृष्ठभूमि जो उनकी रही वो इस तरह की थी
1: इस
0: कि
1: तरह
0: उन्हें पढ़ने
1: जी
0: लिखने का मौका ही नहीं मिल पाया। और जब छोटी सी थी वो, तो चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्हें, और मिट्टी और गेरू, जो आमतौर पर हम देखते हैं ना कि घरों में गेरू से कुछ रंगोलियां
1: रंगों से जी
0: अल्पना
1: जी
0: बनाई जाती है, तो उन्हीं से बस उन्हें भी खेलने का शौक लगा। और खेलते खेलते रंगों से कभी हाथी कभी घोड़ा और कभी पेड़ों के जंगलों से जो चीजें मिल जाती थी उन्हें लाकर वो चित्रकारी का अपना शौक है उसे पूरा किया करती थी।
1: जी अब क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र थी उनकी, तो पड़ोस के ही गांव में उनका

0: बड़ा हो गया। पति पत्नी दोनों आसपास के गांव शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन चला ही रहे थे बस इसी तरीके से। और भूरीबाई भील आदिवासी समुदाय की भित्ति चित्र परंपरा में बहुत प्रशिक्षित भी थी और घर की कच्ची दीवारों पर गेरू से या कभी कोई दूसरे प्राकृतिक रंग से चित्रकारी वो करती थी। और ये हुनर कहीं कुछ ऐसा रहा कि राजधानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ले आया। तो 1982-83 की बात थी, भोपाल में भारत भवन का निर्माण चल रहा था चंचल, तो प्रदेश के अलग अलग अंचलों से आदिवासी कलाकारों को बुलाकर यहाँ के निर्माण में मदद लिया जा रहा था उस वक्त। तो भूरीबाई के पति को भारत भवन में बगीचे की देखभाल का काम मिल गया, तो उनके साथ वो भी भोपाल चली आई।
1: और बिल्कुल, क्योंकि उस कच्ची मिट्टी से गेरू से खेलने का शौक तो उनको था ही, इन प्राकृतिक रंगों की चित्रकारी से जो हुनर उनको मिला था, तो बस जब उनके पिता आए तो वो भी चली आई। और उनके पिता जो कि बगीचे की देखभाल का काम किया करते थे
0: जी, उनके पति चले आए, हाँ, पति के साथ,
1: पति के साथ वो चली आई और उन्होंने भी भारत भवन में मजदूरी का काम करना वहां शुरू किया। और यहाँ उनकी मुलाकात हुई उनके जो गुरु थे जे स्वामीनाथन, उनसे हो गई। और उनकी जो संस्कृति थी, वहाँ के जो देवी देवता थे, उनको समझने के लिए भूरीबाई और उनके पति से उन्होंने बात की। इसी दौरान उन्हें यह भी पता लगा कि देवी देवताओं के चित्र घर की दीवारों पर बनाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है देश में। तो जे स्वामीनाथन ने पहली बार भूरीबाई से देवी देवताओं के चित्र कागज पर बनाने को कहा, यानी कि दीवारों पर तो बनते ही थे लेकिन ये चित्र उन्होंने कागज पर किस तरह उकेरे जाएंगे ये उनको कहा।
0: ये उनको कहा, तो वे तो उंगलियों से बनाती थी, अब उन्हें कैनवास पर बनाने के लिए जब कहा तो बड़ी समस्या उनके सामने आन पड़ी कि जीवन में कभी कलम को तो हाथ ही नहीं लगाया। घर पर उन्होंने लेकिन क्या था, थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर पहुंची अपने कला गुरु के जे स्वामीनाथन के पास। भूरीबाई ने 5 दिनों में यह काम करके दिखाया जिसके लिए उन्हें उस वक्त 50 रुपए मिले। यहां जी
1: भाई, उस समय की जब आप बात कर रही हैं तो 50 रुपये मिलना अपने आप में बड़ी बात हुआ करती थी। और यहीं से जो उनकी कला की यात्रा है ये भी शुरू हो गई और ये ऐसी शुरू हुई कि फिर आगे चलकर विश्व स्तर तक पहुंची है। और भूरीबाई भी अपने बारे में बताती हैं कि उन्हें चित्रों में जो जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर हैं, जंगल हैं, पशु पक्षी हैं और त्यौहार, ये उनके मुख्य विषय थे जिनको वो चित्रकारी में उकेरा करती थी। और इन चित्रों को छोटे आयताकार वो बनाया करती थी जिनमें उंगलियों से बिंदी बिंदी लगाकर उसे वो बिल्कुल जीवंत बना दिया करती थी। हर कलाकार का चित्रकारी करने का जो एक अंदाज होता है तो वो उनका अंदाज था।
0: भूरीबाई कहती हैं कि उनको कला का पहला सम्मान 1986 में मिला और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी देवी अहिल्या सम्मान उन्हें दिया। 2018 में उनके चित्रों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी लगी जो कि अमेरिका में लगी। बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और जापान जैसे देशों में भी अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। हर जगह उनकी चित्रकारी को इतना पसंद किया गया कि उसके बाद मतलब उन्हें साल हर साल बुलाया ही जाता था कि आप आकर के एग्जीबिशन लगाइए।
1: बिल्कुल, हम अगर देखें कि उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, किस तरह के परिवार से वो आती हैं, उन्हें पढ़ने लिखने को स्कूल जाने को नहीं मिला, किसी बड़े स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं है उनके पास में, लेकिन जिस तरह के सम्मान उन्होंने पाए सिर्फ अपनी उस कला के जरिए, तो अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करें तो वो छोटा बड़ा नहीं, वो आपको कहीं एक जगह ले जाकर वो सम्मान दिलवा सकता है।
0: बिल्कुल, वे कहती हैं कि अपने समुदाय में वो महिला है जिन्होंने कागज और कैनवास का इस्तेमाल किया है और पेंटिंग करने के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है। एक मजदूर से लेकर विश्व स्तर तक अपने समुदाय के पेंटिंग को पहचान दिलाने वाली वे पहली महिला बनी जिसके लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
1: और भूरीबाई का ये मानना है कि आप चाहे गाँव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, किसी भी महिला को अपने क्षेत्र में हुनर को आगे ले जाते हुए जीवन में आगे जरूर बढ़ना चाहिए। और हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं अपनी सभी सखियों को और अपने सभी साथियों को कि आप उम्र को एक सिर्फ नंबर मान के चलिए और उम्र को किसी भी चीज में आड़े मत आने दीजिए, आप आगे बढ़िए, अपने शौक को पूरी तरह से जी लीजिए। और अब एक गाना सुन लें।
0: चलिए।

0: आता है।
1: बिल्कुल
0: और दोस्ती भी ऐसी थी, अगर आपको दोस्त कोई बहुत अच्छा मिल जाए ना, आपके रंग में वो रंग जाए, तो बस ऐसा अगर दोस्त एक भी आपके पास है ना, तो वो 100,000 दोस्त के बराबर है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, यही एक संदेश हमारी एक सखी ने लिखा है, दोस्ती से ही तो प्रेरणा लेकर सखी सहेली का नामांतरण हुआ होगा। हम सब आपस में अच्छे दोस्त हैं, सोचो अगर सखी सहेली ना होती तो हमारी दोपहर कितनी सूनी होती। भाई, सखी सहेली के रहते
0: जी,
1: आपकी दोपहर कभी सूनी नहीं होगी।
0: और पता है दीपा, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्तों से हम घिरे हुए होते हैं, जिनमें से अधिकतर, या तो हम कहें सभी रिश्ते, जन्म से संबंधित होते हैं।
1: जी
0: और जन्म से जो जुड़े हुए रिश्ते हैं, इन्हें बदल पाना भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन इन जन्म से जुड़े रिश्तों के अलावा जो एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है, वो होता है दोस्ती का। और ये वो रिश्ता है जिसे हम अपनी सोच समझ के साथ में खुद चुनते हैं और खुद इस रिश्ते से जुड़ते हैं।
1: बिल्कुल सही
0: और
1: कहा।
0: जीवन के हर कदम पर अलग अलग लोग हमें मिलते हैं, कुछ से अच्छी जान पहचान हो जाती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम दोस्त कह पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही,
0: मुश्किल समय में जो व्यक्ति हमारे लिए मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है, वही सच्चा दोस्त होता है।
1: लेकिन चंचल, वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दोस्ती नाम का कोई रिश्ता नहीं होता। सोशल नेटवर्किंग के जमाने में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई दोस्त नहीं है। तो क्या हो ऐसा है कि उन लोगों को दोस्ती करने का सही तरीका मालूम नहीं है?
0: ऐसा तो नहीं हो सकता।
1: समय के साथ साथ दोस्ती के मायने भी बदल रहे हैं। आज जहां ज्यादातर लोग अपना मतलब और स्टेटस देखकर दोस्ती करते हैं, वहीं पुराने समय में दोस्ती का संबंध सिर्फ, पहले कैसा होता था, बिल्कुल दिल से दोस्ती हुआ
0: हाँ,
1: करती थी।
0: दिल से जुड़ जाते
1: और
0: थे।
1: अब जो थोड़ा सा एक मॉडर्न जमाना कह लो या आधुनिकता कह लो, स्वार्थ की चकाचौंध कह लीजिए, आज दोस्ती को एक माध्यम की तरह बना दिया गया है, जबकि ऐसा कतई होना नहीं चाहिए।
0: इसीलिए तो हमारे साथी लिख रहे हैं कि दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा और सूना सा लगता है, क्योंकि दोस्त ही हर खुशी और जश्न और गम को हल्का बनाते हैं। वे भरोसे, ईमानदारी और बिना शर्त के हमारे सपनों को सहारा देते हैं। एक सच्चा दोस्त जीवन में सुकून, मस्ती और निस्वार्थ साथ लेकर आता है। दोस्ती के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो हमारे साथी ने हमें लिखकर भेजी हैं। खुशी का एहसास, दोस्तों के बिना ज़िंदगी बेरंग है, वो हर पल को खुशी से भर देते हैं। सच्चे दोस्त की पहचान होती है कि अपनी कमियों को स्वीकार करे और मुश्किल समय में हौसला बढ़ाए, भावनात्मक सहारा देते हैं। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक नहीं करते, बल्कि रोते हुए को भी सहारा देते हैं, कड़वे सच बताने वाले भी होते हैं। और दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसे हम अपनी पसंद से चुनते हैं, उसमें स्वार्थ, अहम, इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं
1: बिल्कुल
0: होती।
1: सही कहा। और एक हमारी सखी कह रही हैं कि दोस्ती पर कोई बात की जाए जिसमें कृष्ण, सुदामा और कर्ण, दुर्योधन की मित्रता की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दोस्त एक दूसरे दोस्त के चेहरे का भाव समझकर उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देते हैं। और दोस्ती यही मांगती भी है, अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, भाव यह रहता है कि हमें ये वापस मिल जाएगा, लेकिन तू जो मतलब दोस्त है वो
0: जी
1: तू बस मेरे साथ रहे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। आज के युग में बनावटी दोस्त तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास भले अकुल संपत्ति हो, हिचकते नहीं है, कभी कम होगा और कभी मांगते रहेंगे, जिनसे आप वापस कुछ पाने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। यानी कि वो बनावटी दोस्त के बारे में बता रहे हैं।
0: तो चलिए अब सिर्फ बातें नहीं करते हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। अच्छा सा
1: चलिए,
2: कहानी बाकी रह गए, दोस्ती यारी रद्द हो गई है। प्यार में दुनियादारी कैसी मुफ्त की चीज नगद हो गई है। छी छी यार की ये पहचान, दोस्ती में कैसा एहसान, जब दोस्ती होती है तो

0: सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वो ही होगा।
1: ये पांचों की पंचायत जो सोचे सही होगा, हम पांडव हैं भारत के, जो कहते वही होगा।
2: ओए जम के एक जमा दूं

0: अर्थात कष्ट बिना ये जीवन
1: आसान नहीं होता। जब दोस्ती होती है तो दो

क्या जब तक जोड़ सलामत साथ सलामत छोटी और बड़ी है तो क्या पांचों है तो हाथ सलामत एक एक के है पांच मुकद्दर तकलीफों से घबराना मत साझे जोड़ जवानी बचपन पांच से पांच मिले।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ आपकी सखी चंचल वर्मा
1: और दीपा माहेश्वरी।
0: तो भाई हम बात कर रहे थे दोस्ती की। देखो दीपा, हम दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त हैं ना
1: और हमारी सखियां भी तो सारी दोस्त हैं
0: जी।
1: वो तभी तो ये लिख रही हैं कि दोस्ती बिना जग सूना होता है। जैसे सखी सहेली प्रोग्राम में सब सखियां दोस्त हैं, हर रोज एक घंटा हमें मिलता है, सखियों के सुख दुख की बातें करते हैं हम सब, सखियों को जीवन के अलग अलग विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है और सखियां भी इस दोस्त से कमेंट करके बेझिझक बातें करती हैं। तो भाई यही तो होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जरिया यही है कि हम कमेंट करके एक दूसरे से अपने हर मन की हर बात का को हम साझा कर सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए अगले संदेश में भी बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि दोस्ती अमूल्य होती है जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि दोस्ती के बिना जग सूना है। यदि जीवन में दोस्त ना हो तो दुनिया सूनी सूनी और बेरंग लगने लगती है। मित्र हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और उदासी को दूर करते हैं। ये जीवन का सबसे सुंदर और अनमोल रिश्ता है। ये एक ऐसा बंधन है जहाँ बिना किसी स्वार्थ के ये दिलों को जोड़ता है। सच्चा मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। जीवन में कठिनाइयाँ जब भी आती हैं तो दोस्त हमारा हौसला बनते हैं। दोस्ती में अपनापन, विश्वास और समझदारी होती है। एक अच्छा दोस्त हमें सही राह दिखाता है, गलतियों से बचने की सीख देता है। तो जहाँ इन्होंने लिखा ना कि दोस्ती अनोखा बंधन है, तो दोस्ती वो बंधन है जहाँ कोई बंधन नहीं होते,
1: सही बात है,
0: है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक और हमारा एक संदेश आया, हमारे ये तो श्रोता भाई हैं, ये कहते हैं जैसे मेरी ज़िंदगी में विविध भारती सखी सहेली एक सच्चे दोस्त के रूप में आया, वैसे ही महसूस होता है कि एक सच्चे और प्यारे दोस्त के बिना जग सूना है। कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं जब अपनी हमें हमारी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन एक सच्चा मित्र बिना कहे मन की बात समझ जाता है। सखी सहेली ने सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि हर दिन अपनापन, मुस्कान और भावनाओं का एक सुंदर रिश्ता दिया है। ये कहते हैं सच कहूँ तो जैसे दोस्ती बिना जग सूना लगता है, वैसे ही सखी सहेली के बिना जीवन का एक हिस्सा अधूरा लगता है। तो क्या बात है, हम अपने

0: इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और ये साथ यूं ही चलता रहे, ये इसी बात की हम कामना भी करते हैं।
1: और भी बता दें कि जो आने वाला महीना है यानी जून, 2 जून को सखी सहेली की वर्षगांठ है,
0: वर्षगांठ है।
1: तो आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए अपनी सहेली के लिए, इस दोस्त के लिए।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा।
1: अगला संदेश पढ़ते हैं। इसको हमारे श्रोता जो भी लिखने वाले हैं संदेश को, उन्होंने एक गीत की पंक्ति से शुरुआत की है कि दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं। दोस्ती के बिना जीवन वास्तव में अधूरा है और सूना है। दोस्त केवल साथ रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वे खुशियों को दुगना करने वाले, दुखों को आधा करने वाले हिस्सेदार होते हैं। उनके बिना हंसी, यादें, मुश्किल समय में ढांढस बंधाने वाले ये लोग होते हैं। सुख दुख बांटने के लिए दोस्त सबसे बड़ा सहारा होते हैं। दोस्तों के साथ बिताया हर पल जिंदगी की असली कमाई है, और इसी दोस्ती के बिना जीवन में एक गहरापन सुनन सुना गहरा सूनापन आ सकता है। तो बिल्कुल आप दोस्त बनाइए। अगर आपको अकेले रहने की आदत है या आपको लोगों से मिलना जुलना कम पसंद है, तब तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप दोस्त बना रहे हैं, तो लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा मत
0: बिल्कुल
1: कीजिए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: वहां पर भी आपको धोखा देने वाले दोस्त मिल सकते
0: मिल ही
1: हैं।
0: सकते हैं। और एक हमारे साथी ने संदेश दिया है कि रेडियो तो हमारा बचपन से साथी रहा है। एक समय था, एक बार के लिए खाना भूल जाते थे, पर सखी सहेली सुनना नहीं भूलते थे, नहीं भूल पाते थे। पर आज व्यस्तता के चलते बस सखी सहेली सुन पाते हैं। परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ हम आपको सच्चा दोस्त मानते हैं। तो भाई, हमारे लिए आप हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि श्रोताओं के बगैर, हमारी सखी और सहेलियों के बगैर तो ये प्रोग्राम पूरा अधूरा है। इसका ये जो रिश्ता है, इसकी
1: जी
0: डोर अगर एक तरफ स्टूडियो है तो दूसरी तरफ आप सब हैं। आप ही सबसे इसकी सुंदरता है।
1: बिल्कुल, अगर सोचिए हम दोनों ही मिलकर सारी बातें करेंगे तो, और इनके कमेंट्स नहीं होंगे, तो प्रोग्राम कितना खाली खाली सा लगेगा ना।
0: बिल्कुल, इनके बिना तो सब वैसे ही सब कुछ सूना है।
1: हाँ, तो वही, चलिए सुनापन दूर करें, एक और संदेश पढ़ते हैं। दोस्ती की मिसाल देखना है तो हमारे विविध भारती के फेसबुक के मित्रों को देखिए, वहाँ हर रोज मिलते हैं और पर्सनल मुलाकात भी करते
0: क्या
1: हैं।
0: बात है भाई, ये तो बहुत ही सुंदर बात है।
1: तो अब दोस्ती की बातें बहुत हुई, क्यों ना एक दोस्ती से भरा गीत सुन ले।
0: चलिए।

भजन संध्या कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हम आपको सुनवा रहे हैं सैम बडाली और साथियों की आवाजों में।

श्रोतो, इसी के साथ आज का भजन संध्या कार्यक्रम अभी यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम युवमंच।

युवा दोस्तों, जय हिंद। कार्यक्रम यो मंच सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जी युवा दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप बहुत ही प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, स्वास्थ्य होंगे। और बिल्कुल जी, देखिए बहुत सारे जो हमारे युवा साथी हैं उनके एग्ज़ाम के रिजल्ट्स भी आ गए हैं और उनके मन में बहुत सारे प्रश्न भी उत्पन्न हो रहे होंगे कि उनको क्या करना चाहिए, कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या आगे उनके सपने होने चाहिए। सब कुछ उथल पुथल जो है वो आपके दिमाग में अभी चल रही होगी। तो युवा दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, जानकारियां देंगे, मनोरंजन के लिए गीत संगीत भी होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं NCERT के जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं उनके बारे में। युवा दोस्तों, देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर विद्यार्थी तक पहुंचाने की दिशा में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया हुआ है। और NCERT ने हाल ही में स्वयं यानी खुद के एक प्लेटफॉर्म पर विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो शुरू किए हैं। और इन कोर्सेज का जो उद्देश्य है वो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करवाना है, आसान उसको बनाना है, सुलभ और किफ़ायती बनाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहल उन विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है जो आर्थिक कारणों से महंगे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश नहीं कर पाते। और आज देश के कई शहरों में बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। ग्रामीण और छोटे शहरों के अनेक प्रतिभागी जो हैं वो विद्यार्थी केवल अपनी आर्थिक सीमाओं के कारण गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में NCERT ने ये कोर्स समान अवसर की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम जो है वो माना जा रहा है। और उन्होंने ये कोर्स जो हैं वो ऐसे बच्चों के लिए बनाए हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं है, सक्षम नहीं है। उनके लिए ये जो कोर्सेज़ हैं ये फ्री है, ऑफ कॉस्ट हैं

इसके आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का ये उद्देश्य है, यानी NCERT का ये उद्देश्य है कि सभी विद्यार्थियों को जो है वो लाभ मिले कोचिंग का जो नहीं ले पाते हैं, और कहीं ना कहीं जब वो इन ऑनलाइन फ्री कोर्सेज में जाएंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो कोर्सेज हैं विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होंगे जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं और घर बैठे क्वालिटी वाला जो अध्ययन है, एजुकेशन जो सामग्री है यानी मटेरियल है वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन ऑनलाइन कोर्सेज की आपको जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सब कुछ बताएंगे आपको कहाँ पे ये किस तरह से चीज़ें आपको मिलेंगी। और इन ऑनलाइन कोर्सेज की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यह NCERT के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, और इसलिए इसकी जो पाठ्य सामग्री है पूरी तरह बोर्ड परीक्षा के सिलेबस के अनुरूप होगी, और इसमें विद्यार्थियों को विषयों की बेहतर समझ और आत्मविश्वास बढ़ाने में उनकी मदद करेगा ये कोर्सेज। तो बिल्कुल दोस्तों, अपने सपनों को हमेशा जो है वो ज़िंदा रखिए, अपने सपनों को संवारिएगा और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। जब आप जो हैं वो मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, तो भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं। और बिल्कुल जी, अगर आपके अंदर जो एक ज़ील है, हौसला है, जज्बा है, जोश है, तो यकीन मानिएगा आपके सपनों को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है और खुले आकाश में फिर उड़ना है, और बिल्कुल ये उड़ान होगी सक्सेस की, सफलता की, और वो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी जब आप मेहनत करेंगे।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युमंच। युमंच कार्यक्रम में युवा दोस्तों हम बात कर रहे हैं NCERT के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। तो बिल्कुल जी, युवाओं के लिए बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं NCERT के द्वारा, और ये कोर्सेज जो हैं वो युवाओं को बनाए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारे कोर्सेज रहते हैं और जो आर्थिक

कारणों से जो युवा हैं कहीं ना कहीं महंगे कोर्सेज या कोचिंग इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते, उनके लिए ये कोर्सेज बनाए गए हैं। और बिल्कुल ये जो कोर्सेज हैं वो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और यहाँ से जो युवा हैं वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो कोर्सेज हैं ये NCERT के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। अब आपको बता देते हैं युवा दोस्तों कि ये जो कार्यक्रम है, यानी ये जो NCERT का एक ऑनलाइन कोर्सेज का फ्री कार्यक्रम आपके लिए बनाया गया है, ये विशेष रूप से कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्रों के लिए तैयार किया गया है। और ये कोर्स प्रत्येक विषय के लिए सामान्यतः पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है वो उपलब्ध रहेगा। और इसमें अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे विषय शामिल हैं। और इन विषयों को आप वहाँ पे जाकर जो है वो विशेषज्ञों की मदद से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और प्रत्येक विषय के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के अलग-अलग कोर्स भी वहाँ पे उपलब्ध हैं। यानी अगर आप जो हैं वो इन कोर्सों को वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो विशेषज्ञों द्वारा आपके हर प्रश्न का, हर उलझन का वहाँ पे आपको जवाब मिलेगा। और ये जो मैंने आपको बता दिए विषय, इनसे संबंधित और भी बहुत सारे जो आपके मन में प्रश्न होंगे, जिज्ञासा होगी। और अच्छी बात है, युवा मन में जिज्ञासाएं आनी भी चाहिए, खासकर अपनी पढ़ाई से संबंधित तो जिज्ञासाएं आपके मन में होनी चाहिए। और ये सब विषय आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, फ्री में पढ़ सकते हैं, मुफ्त पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल युवा दोस्तों, NCERT के द्वारा ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, इनका उद्देश्य यही है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं जो कि कई बार आर्थिक सीमाओं के कारण जो है वो क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, गुणवत्तापूर्ण जो मार्गदर्शन है उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कोर्सेज बनाए गए हैं, इस बात को ख्याल में रखकर बनाए गए हैं कि हर व्यक्ति तक जो है वो शिक्षा पहुंचे, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा पहुंचे, हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन पहुंचे, इसीलिए कोर्सेज बनाए गए हैं। और बिल्कुल जी, इन कोर्सेज के माध्यम से आप जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बता दिया कि ये जो मेन जो कोर्सेज हैं वो 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि देखिए युवा दोस्तों, ये जो 11वीं और 12वीं आपके जीवन में आती है, यानी 10th के बाद, ये 2 साल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और ये 2 साल आपकी ज़िंदगी भर का जो आप कह सकते हैं फलसफा है उसको तय करते हैं। आपको क्या बनना है, किस दिशा में आगे जाना है, आपके जीवन में आपका करियर क्या होगा, कहाँ से आप जो है वो धन अर्जित करेंगे, या कह लीजिए आपकी जो नौकरी है वो क्या होगी, ये इन 2 सालों में पता चलती है। तो इसलिए हम तो आपको यही कहेंगे कि आप जो हैं 11वीं और 12वीं में बहुत, आप कह लीजिए, गंभीर होने का थोड़ा सा बात है, आपको गंभीर होने का विषय है। क्योंकि इन 2 सालों में जो आपने मेहनत कर ली, तो यकीन मानिएगा फिर सारी ज़िंदगी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, जो विद्यार्थी अपने विद्यार्थी काल में मेहनत कर लेता है, अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, उसे ज़िंदगी में फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि फिर उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है, उसे एक अच्छी सोच मिल जाती है कि मुझे उसे करना क्या है, चाहे वो नौकरी करे, बिजनेस करे, या फिर वो अपना काम करे। क्योंकि देखिए, जो विद्यार्थी पढ़ा लिखा होगा उसके दिमाग का स्तर भी उस तरह से ही कार्य करेगा। इसीलिए पढ़ाई बहुत ही ज़रूरी है। और हम तो आपको ये कहेंगे कि देखिए, इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं इनका आप लाभ उठाइए, और इनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे आपको और भी जानकारियाँ देंगे, क्या शुल्क रहेगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट रहेंगे, कैसे आप कहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है संगीत में विराम का। आप सुनते रहिए कार्यक्रम युवमंच।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल

0: कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
0: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यू मंच। युवा दोस्तों के लिए आज के इस प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं NCERT के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। तो बिल्कुल जी, बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, युवा हैं, जो किन्हीं कारणवश जो है वो अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनके लिए जो है वो NCERT लेके आया है फ्री ऑनलाइन कोर्सेज। बहुत सारी हमने आपको बातें बता दी किस तरह से आप जो हैं वो सीख सकते हैं, कौन कौन से क्लासेस के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, पार्ट वन पार्ट टू रहता है और किस तरह के जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, सब कुछ हम आपको बता चुके।

0: स्टडी मटेरियल है वो वहाँ पे मिलेगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं, डिस्कशन फॉर्म शामिल हैं। प्रत्येक कोर्स की अवधि जो है वो लगभग जो है वो 21 से 24 सप्ताह की है, और इस दौरान विद्यार्थियों को व्यवस्थित रूप से सीखने और अभ्यास करने का अवसर भी मिलता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप जो हैं वो ये कोर्सेज सीख सकते हैं, और अब आपके मन में आ रहा होगा कि आप ये चीज़ें कहाँ से सीखेंगे, तो ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको वेबसाइट भी हम बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा और सरल हो जाए, और आपको बता दें कि ये जो कोर्सेज हैं आमतौर पर शैक्षणिक सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 सितंबर 2026 तक खुला रहता है, और ये सभी कोर्सेज स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। जी हाँ, स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, और इसकी जो आप आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं, स्वयं swayam.gov.in। इस पर आप लॉगिन करेंगे तो आपको सारी जानकारी वहां से प्राप्त हो सकती है, और इच्छुक विद्यार्थी जो हैं वो अपने सुविधा के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण करके विभिन्न विषयों के कोर्स में नामांकन कर सकते हैं, और वहां से आप ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो सीख सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि हम कहाँ से पढ़ेंगे, क्या होगा, देखिए जहाँ चाह वहाँ राह, और हम तो आपसे यही कहेंगे कि अपने अंदर जिज्ञासा रखिएगा, और आप जो हैं वो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
1: आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है
2: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
1: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है, और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8091671766।
2: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यू मंच, और कार्यक्रम यू मंच में बिल्कुल समय बहुत कम हमारे पास बचा है। हम तो यही कहते हैं कि देखिए युवा दोस्तों, आप बहुत ही प्रतिभावान हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, बस अपने अंदर विश्वास रखिएगा, उन क्षमताओं को निखारने की कोशिश करिएगा, दिन रात मेहनत करिए, संघर्ष करिए, परिश्रम करिए, और जो संघर्ष है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, वेयर देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ये मत सोचिएगा कि हम ग्रामीण प्रवेश से आते हैं, हम बहुत छोटे से कस्बे से आते हैं तो भला हम क्या करेंगे, हम बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं या आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं है, ये सब सारे के सारी चीज़ें बहाने हैं। अगर आपके अंदर हौसला है, जुनून है, तो यकीन मानिएगा आप कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम का समय यहीं पर हो रहा है पूरा, दीजिए अनुमति अपने रेडियो दोस्त अनूप को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यू मंच, आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र FM 101.8 MHz पर शाम के 6 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: वाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के चार नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन और स्थानीय शहरी निकायों में 17 मई को मतदान होगा। ऐसे में इन चुनावों के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला व पालमपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो हिमाचल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1: भाजपा के पास विपक्ष में कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं, न कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, न कोई बड़ा मुद्दा। विपक्ष हिमाचल प्रदेश में मुद्दाहीन। ये चार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है ये पार्टी से मतलब है, इसको उस तरह से लड़ा जा, पार्टी के लोग सभी लोग इसमें काम कर। और हमें उम्मीद भी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का समर्थन पहले भी मिला है और जब सरकार गिराने का प्रयास किया गया उस वक्त भी द्वारा लोगों ने कांग्रेस सरकार को मजबूत किया और अब भी लोगों का समर्थन मिलेगा। वोटों की दृष्टि से हमारी सरकार काम नहीं कर, हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करना और वो अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम मंडी चुनावों के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंडी की जनता को केवल उपेक्षा, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी के प्रति हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है और 2025 की आपदा के दौरान ये पूरी तरह उजागर हो गया। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मशाला में विकास कार्य ठप पड़े हैं और लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में लोगों पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है और निगम की संपत्तियों पर कांग्रेस पार्षदों व वर्तमान मेयर द्वारा कब्जा किया गया है। विक्रम ठाकुर ने दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी।
2: नगर निगम की जो संपत्ति है उसके ऊपर किस प्रकार से कब्जा किया हुआ है, किस प्रकार से उसके ऊपर भ्रष्टाचार किया हुआ है और उस घोटाले के कारण से सरकारी खजाने के ऊपर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है उसका नुकसान हुआ है। धर्मशाला नगर निगम में लोकतांत्रिक कामकाज लगभग ठप हो गया है। 2 वर्षों से सदन की कोई बैठक नहीं हुई और जो महत्वपूर्ण मुद्दे विकास से जुड़े हुए हैं और जनता की जो शिकायतें हैं वो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना परचम लहराएगी।
0: राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करते हुए कहा है कि 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और राष्ट्रहित में हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पूरी तरह स्वैच्छिक, एहतियाती व दूरदर्शी सोच पर आधारित है और देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। हर्ष महाजन ने कहा कि विपक्षी दल इस संबंध में भ्रम और डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस अपील से देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है।
3: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की

0: सेल हुई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सफर सुहाने गाने पुराने। सफ़र सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी दोस्तों, शाम के 6:06 हो चुके हैं और बिल्कुल जी हर दिन की तरह हम आपके लेकर आ गए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम सफ़र सुहाने गाने नए पुराने। नए और पुराने गीतों का ये संगम बिल्कुल जी हम लेकर आते हैं और कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपके लेकर आए हैं हम फिल्म प्रेम कहानी से। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की हैं।
2: एक कहानी।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने पुराने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम से। आवाजें उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और साथियों की हैं।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।

सफर सुहाने गाने नए पुराने। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति उमराव जान फिल्म से। आवाजें अलका याग्निक और साथियों की हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर शाम के

0: रोशनी बोबो, मिंज लगा दे थी मजोड़ी पर बैठी बैठी तू भी घूमी आई पूरे हिमाचल ची।
1: हाँ भैया दिखे जी लोक गीत है ना, इन्हें भी रीस नहीं हुंदी आई।
0: दिख पे बैठे हो घर है ना, कने गीत सुनते सुनते ही लगता भी पता नहीं कुती कुती घूमी आए यहाँ भी ना।
1: ओ तम ये दिख बोल देना सियाने पे ए जहां मानना ना।

0: स्हाबै फिर भाई बुआई करनी, सिंचाई करनी आई, या फिर जो हमारी जैविक दवाइयां होंगी हैं तिनारा जे अस है इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: हाँ, इस अलावा हम संरक्षित खेती भी करी सकते, इस विच पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, कने सैड नेट। इस तकनीक ने जी इसे तापमान नियंत्रित रहना, कने सब्जी, कने और कोई भी उत्पादन है जी इस विच बढ़ोतरी होनी।
0: ठीक है गला दी, हुण दिखना जे ज्यादा धुप लगगी तो अपना छतरी खोलना समझदारी नहीं।
1: बिल्कुल,
0: अगर ग्लोबल वार्मिंग होवा दी आई तो हैं जी ऐसे संरक्षित खेती दी साइड जी ऐसे भी जाई सकते हैं। कने टाइमा टाइमा रा भाई है जी हरी मिट्टी ना ते हरी जांच हां जो जरूर करवाने चाहिंदी ताकि अहें सही मात्रा च जी आ तिस च उर्वरक पाई सकण, कने फसलां दी पैदावार जो जी ऐसे बढ़ाई सकण।
1: कने जी जी कीट कने रोग प्रबंधन हुंदे ना, इस वास्ते हां जो जैविक कीटनाशकां दा प्रयोग करना चाहिंदा, फोरमोन ट्रैप दा प्रयोग करना चाहिंदा, कने जी जी नीम आधारित दवाइयां ने तिन्हां दा प्रयोग जी से ज्यादा करना चाहिंदा।
0: ठीक गला दी, दिख पई जे नीम ही होई गई है ना तो ये नीम जे आ से आहार बड़े फायदे रा काम करदा ही है या। इस ते दिख पई कई दवाइयां भी बन दी हैं ना, सौगी सौगी अगर अहें नीम रा पेड़ लगाए रहे है तो तीसरी ठंडी हवादार छाया भी रहनी आई है ना, तो कई फायदे होंगे तो जो पेड़ पौधे जो जरूर लगाने चाहिए। कने पेड़ पौधे अगर औषधीय अगर फलदार है तो हाँ जो भाई और ज्यादा फायदा मिलना ही है ना।
1: कने दिखा पौधे की सुरक्षा जी से अहां किया करनी पे, तेज धूप ते बचाने ताई अहां जो जी से सैड नेट लगाई देना चाहिए, कने पाले ते बचाव ताई जी से हल्की सिंचाई यहाँ जो करना चाहिए, कने गर्मी च सुबह या संझ के टाइम जी से हां जो सिंचाई करना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक सारिया गल्लां गलाइयां, पर पाइया हुण गल ना जो थोड़ा रोक, कने दिख रेडियो च लोक गीत लग रहा इस सुनी लैंदे।
1: हां देखी, यदि सूरत इस पास से यही तो लगाई देना लोक गीत फिरी।

0: क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। कल दूसरे दिन ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर एक सत्र में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबू धाबी में अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरियां अधिकतम क्षमता पर काम कर रही हैं और एलपीजी कनेक्टिविटी में भी वृद्धि हुई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि 20 से अधिक चालक दल वाले 2 जहाज 90,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी के साथ कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर गए हैं। श्री मंगल ने बताया कि सोमालिया से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह जा रहे भारतीय व्यापारिक जहाज एमएसवी हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़के आग लगने से जहाज कथित तौर पर डूब गया है।
1: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में इसे संचालित किया जाएगा। इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। इस चरण के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के महासचिव एडापड्डी के पलनीसामी ने आज राज्य के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले एआईएडीएमके विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से की गई 7 अपीलों के मद्देनजर कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप दिल्ली सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम रेडियो दीतान।

0: अब मेरे गे माए बरखा काली होई चिकड़े चिकड़ हो गया बार जबर गया पता ही नहीं लग्या।
1: ओ अम्मा चिकड़ नहीं होया, ए मैं अपने टिप्सी नु आने लाई रही है थी। टिप्सी टिप्सी खड़ी रह खड़ी रह खड़ी रह टिप्सी खड़ी रह, देख कालकनी ओ नोड़े लग रही ओ कालकनी ले ले टिप्सी बस बस बस बच्चा खड़ी रह खड़ी रह खड़ी रह नम्मा ते नाठ मात नाठ
0: अकड़े कुती जिप्सी मिंग्यो ता सुजा दी नी।
1: अम्मा जिप्सी नी ए मेरी टिप्सी।
0: क्या है
1: ए टिप्सी नो ए हदर टिप्सी।
0: वो कुत्तियां बिल्लियां दे नाम नहीं आदे आजकल आदे और रखने मैं टैक्सी दिखा दी पई कुत्ते घड़ोती देऊंगी।
1: ओ नहीं नहीं टिप्सी ए मैं बांकी जैसे शैंपू करने नौने लाई रही थी।
0: शैंपू गए ना तेहा घर गया ना होना ना ए 100 ग्राम तेरा कुत्तो कन्हा ते पानी मुए पूरा टैंक रड़ो आई त्या दे
1: तो मेरी टिप्सी अभी हुन चमकना है अभी मेले जो जाना।
0: इहा ता चमकी आना ना पर मुए पानी दिख ओ लोई गया बुल्ले खेतर च जनते बाढ़ आई दी थी।
1: ओ बथेरा आदा नलकिया
0: अबो तेरे आदा नलके फूकिया हने पिया की टिप्पी नहीं पई भी
1: ना मेरी टिप्सी खातर ता बथेरा आदा
0: पैप काओ छड़ी दी भी ता आंखा खुली हा ता बंद करी दे मुझे।
1: ओ जिप्सी भी लाई रही थी नोने सोगी ओ जे बड़ी जिप्सी खड़ी रही ना कन्ने टिप्सी आ सोगी जिप्सी भी लाई रही नोने पर टिप्सी नहीं टिकदी मेरी ए नठी जा दी नठी जा दी।
0: ओ मैं एक तेरी टैक्सी कने एक तेरी सीसी।
1: ओ सीसी नहीं अम्मा जिप्सी।
0: ओ मुई गे ही ना टिप्सियां कने तेरियां जिप्सियां तू और ग्रां दे भी रुड़वाई देने
1: ते नहीं रुड़ दे।
2: ओ ठंडे ठंडे पानी ने नौना चाहिदा हाय हाय हाय हाय हाय मजा आवादा वे साबण आज ता रंग निखरी निखरी ने पौना बड़ी भारी खबरी लाल मणि री भाई अजकल से प्या गए नठी गई कुछ कीजो कने घर आले री चिंता ही नहीं है को पानी आया थी। ओ भाई ये कोई नहीं सुना दा वे मेरा वो इं पकड़ कुछ किते तो लिया वे आहा कने कप भी आई गया था चलो भाई बड़ किया है चलता हो दिखाई मिलो कु आखी हुए एक ता इक्की ने दिखने पौना मिंजो ओ चला हुए रस्ते हुए ए ए ए ए कौन आवे अगे ओए पिलर कुती आई है रस्ते
3: चे भूत भूत ओ कौन है भूत है
2: ओ मोया भूत नी मिंजो देखने दे ओए कौन
3: और का साफ करदा वाइपर ने ए हुन आया ओ सी तू पाऊ तू कुदी चलू दा सवेरे सवेरे
2: ओ बडकुआ तै मिली गया मुआ पानी चली गए थी नहाने लगी दा मैं कने देख साबण तीए मलोरा सारा है
3: मैं सोचे तू कुल्लू मनाली ते आया बर्फ लेने कन्ने
2: ना ना ना भाई मैं नहीं ऐसा से बर्फा दा बना दे कुछ की भाई बर्फा दा मानू से नहीं है मैं
3: पानी ता आंदे भी नहीं आदा मैं भी सोचा था नाई लूं बड़े दिन होई गए
2: मोया चल छोड़ने तक उसकी और सी पता नहीं क्या सोची लेना कने बड़की वाले चल दे थी चिलन दे बाल्टी
3: हां तीना दे अंडर वाटर भी है
2: हां चल चल चल चल
3: चल चल चल
2: हां बड़की ओ बड़की है राम राम
0: अब कौन आवे
2: ओहो मैं यहां वे देख साबण लगी दा
0: है तू ही आया हां
2: मैं
3: राम राम बड़की है ये
0: ना
3: तू
0: तो वो चिट्टा पेडू बनी ना कुत्ते चली दा हुए
2: वो मत पूछती बड़की पहले एक बाल्टी पानी येरी दे फेरी राम कथा सुनी लिया मेरे ते
0: वो मोगा बाल्टी कुत्ती दे देनी आले सियाणिया फण सणी ने मिल ली दे
1: ओ टिप्सी कुत्ता चली टिप्सी
2: हा टिप्सी ओ मेरीया लत्ता खाई लिया ओए ओ भाओ क्या ब्राजा
1: ओ मेरी टिप्सी मारी थी मेरी टिप्सी
2: क्या क्या छड्डी दे वो चिट्टे मुर्गे जे रास्ते चे बड़की है क्या पाली रहे
0: ओ पाई गया यहाँ सी सिंगा कोई बहुत लो पता नहीं क्या क्या पाली दा यहाँ ता हंदिया पड़ो सनी
2: ओहो मैं सोचा हूँ मेरी लत्ता चिपकी है कुछ की
3: ओ सी तू कुछ नहीं था लत्ता चिंता मत कर दा इतनी जो जरा देखा दी थी कि भूत है कि आदमी हम लगी क्या पता कि भूत ही है ओ नहीं नहीं आदमी है
2: ओ मैं भी एड़ा ही बोला था वो एक पानी दी बाल्टी
1: टिप्सी पूरी जे ऐसे फेरी खराब होगी हुन फेरी जे ऐसे नुआने पौनी पूरी गंदी होगी ले ले ले ले पूत पूत कर दी से ता दे नठी पई एक बारी बड़के सारा जे ऐसे खराब करी थी एका
0: ओ कड़े तो बड़ियां पोछा मत दे ले ले

0: बौड़ियां साफ करनिया, अखा बखा दे ग्रह तिना दी भी सफाई करनी है।
1: हाँ,
0: सभी जागरूक होन, मुगा अपना है ग्रह बनाए लैन। वे क्या गलांदे सह
1: ओहो सह समाजिक समूह
0: सह बनाए लैन, कट्ठे हो भी साफ सफाई करी सकते हुए। देखा देख गया बड़े लोग लगते सौगी
1: जेड़ा जे जीवन जिसने जे आंदा जेड़ा जिंदगी से बिल्कुल स्वच्छ जे रहंदी हुन पानी दे बिना कौन रह सकदा।
0: हां कोई नहीं पाओ
2: आईना छाई ये टिप्सियां जे नु आ दे
3: मेरी ये टिप्सियां दा भी योगदान आ दिखा ये भी झाड़ू चक्की ने लंदिया।
1: ये ठीक है योगदान ठीक है पर एक पतेरी गल है इस च पे ये पाइपां ने नहीं नुआने हैं 10-10 ग्राम आवले भी।
3: अच्छा बाल्टिया चौकी देने से
1: एड़ा कर लेता है ता सुखी रहना तेरी टिप्सियां
3: कने तो
1: बाकी गड्डियां
3: बर्बाद नहीं करना अगर अपनी टिप्सी नुआनी ना तब बाल्टिया च पानी लेकने नुआनी अगर सोगी अपनी जिप्सी भी नुआनी तब पाइप नहीं लगानी से भी जी ऐसे बाल्टिया च पानी लेकने नुआनी
0: तदे पाई पानी बचाना ना कने साफ सफाई भी रखनी।
1: हाँ
2: ओ सीतू चल चलिए दुए ग्रां च भी करनी है।
1: हाँ भाई बड़की अच्छा ता हाँ। है दुए गांव चली पौंदे
0: सवास सवास जा हाँ, जा
1: ठीक है अच्छा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो दीतान, आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 MHz पर। बड़ी
1: बहू, ये तुम्हारे ना इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे
1: और छोटी, ये तुम्हारे ना,
2: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी,
1: हाँ,
4: आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो। क्या
5: RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफ एम बैंड 101.8 MHz पर शाम के 7:25 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए पहाड़ी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं राजकुमार और सुरेश कुमार के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं पहाड़ी लोकगीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हेतराम कैंथा की आवाज में।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर पहाड़ी लोकगीत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ओम प्रकाश और साथियों की आवाजों में।

0: क्या आपके बच्चे के होंठ या तालू में जन्म से कटाव है?
1: तो घबराइए नहीं, इसका इलाज संभव है। स्माइल ट्रेन के सहयोग से डॉक्टर A.S. ठाकुर मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमीरपुर में क्लेफ्ट होंठ और तालू की सर्जरी बिल्कुल निशुल्क की जाती है।
0: यह सर्जरी सुरक्षित है, बच्चा सामान्य जीवन जी सकता है और चेहरे की सुंदरता व बोलने की क्षमता सुधरती है। यह सेवा स्माइल ट्रेन के सहयोग से पूरी तरह मुफ्त है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

0: 9167176।
1: अपने बच्चे को दें एक मुस्कुराहट भरा भविष्य।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति ज्वाला प्रसाद, अच्छर सिंह परमार और साथियों की आवाजों में।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 51 शहरी निकायों में चुनाव प्रचार जोरों पर। कांग्रेस व भाजपा ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। नगर निगम व शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी। 3,60,800 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के सकारात्मक परिणाम आए सामने। एनसीबी ने सरकार से मांगा विवरण। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर 140 करोड़ भारतीय हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार। और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों व वेतन बढ़ोतरी को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 4 नगर निगमों मंडी, धर्मशाला, पालमपुर व सोलन और स्थानीय शहरी निकायों में 17 मई को मतदान होगा। ऐसे में इन चुनावों के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों

0: नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने आज पालमपुर नगर निगम के विभिन्न वार्डों में नुक्कड़ सभाओं व रोड शो के जरिए मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की। इधर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस की जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि नगर निगम चुनावों में कांग्रेस को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। शिमला में आज उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बीते 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो हिमाचल के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1: भाजपा के पास विपक्ष में कोई मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं, न कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, न कोई बड़ा मुद्दा। विपक्ष हिमाचल प्रदेश में मुद्दाहीन। ये 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो चुनाव है ये पार्टी से मर गया, इसको उस तरह से लड़ा जा, पार्टी के लोग सभी लोग इसमें काम कर। और हमें उम्मीद भी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों का समर्थन पहले भी मिला है और जब सरकार गिराने का प्रयास किया गया उस वक्त भी द्वारा लोगों ने कांग्रेस सरकार को मजबूत किया और अब भी लोगों का समर्थन मिलेगा। वोटों की दृष्टि से हमारी सरकार काम नहीं कर, हम हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम करना और वो अच्छे परिणाम आ रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज नगर निगम मंडी चुनावों के तहत राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जम्वाल ने आरोप पत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में मंडी की जनता को केवल उपेक्षा, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस ने मंडी के प्रति हमेशा सौतेला रवैया अपनाया है और 2025 की आपदा के दौरान ये पूरी तरह उजागर हो गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि मंडी नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस सरकार को करारा जवाब देगी और भाजपा को अपना आशीर्वाद देगी। पूर्व मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मशाला में विकास कार्य ठप पड़े हैं और लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में लोगों पर लगातार टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है और निगम की संपत्तियों पर कांग्रेस पार्षदों व वर्तमान मेयर द्वारा कब्जा किया गया है। विक्रम ठाकुर ने दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी।
2: नगर निगम की जो संपत्ति है उसके ऊपर किस प्रकार से कब्जा किया हुआ है, किस प्रकार से उसके ऊपर भ्रष्टाचार किया हुआ है और उस घोटाले के कारण से सरकारी खजाने के ऊपर लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है उसका नुकसान हुआ है। धर्मशाला नगर निगम में लोकतांत्रिक कामकाज लगभग ठप हो गया है। 2 वर्षों से सदन की कोई बैठक नहीं हुई और जो महत्वपूर्ण मुद्दे विकास से जुड़े हुए हैं और जनता की जो शिकायतें हैं वो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपना परचम लहराएगी।
0: प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने पालमपुर नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार व कांग्रेस शासित नगर निगम पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पालमपुर नगर निगम भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और जनता से धोखे का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरकार के कुशासन का पूरा सच जनता के समक्ष लाएगी। इस बीच भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन और नए दौर के नाम जनता को गुमराह किया। उन्होंने आज नाहन में कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं।
3: जिन वादों को करके ये सरकार सत्ता में आई थी, 3.5 वर्ष बीत गए लेकिन एक भी वायदा ये पूरा नहीं कर। ये बात करते थे नए दौर की, ये बात करते थे व्यवस्था परिवर्तन की, ना वो नया दौर आया ना वो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, अपितु व्यवस्था का पतन जरूर हो गया। तो झूठे वायदे इन्होंने किए थे, वो चाहे महिलाओं से किया गया 1500 का वायदा था या युवाओं से किया गया 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा था या हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात थी, लेकिन ये वायदे 3.5 वर्षों में हवा हवाई हो गए।
0: प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, पालमपुर, मंडी व धर्मशाला सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में 17 मई को वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगर परिषद और नगर पंचायतों के मतों की गणना मतदान वाले दिन 17 मई को ही की जाएगी, जबकि चारों नगर निगमों के मतों की गणना 31 मई को होगी। इन 51 शहरी निकायों में कुल 3,60,859 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव के लिए 589 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ताजा

0: समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के तहत पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में चिट्टे की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए और इसके तहत चिट्टे में संलिप्त अपराधियों के साथ साथ पंचायत स्तर पर मैपिंग की गई है। सरकार का एंटी चिट्टा मॉडल जहां अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो रहा है, वहीं अन्य राज्यों में भी इस मॉडल की चर्चा होने लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार चिट्टा जैसे नशे से निपटने और चिट्टा तस्करी का समूल नाश करने के लिए जल्द ही एंटी चिट्टा अभियान का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय आह्वान का समर्थन करते हुए कहा है कि 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और राष्ट्रहित में हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील पूरी तरह स्वैच्छिक, एहतियाती व दूरदर्शी सोच पर आधारित है और देश में किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है। हर्ष महाजन ने कहा कि विपक्षी दल इस संबंध में भ्रम और डर फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री द्वारा की गई इस अपील से देश की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शिमला शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के बीच सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और वेतन बढ़ोतरी को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी व समान कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारियों को मिलने वाली हर साल की 10% वेतन वृद्धि इस बार रोक दी गई है, जिसे मई महीने की सैलरी के साथ बहाल करने की कर्मचारी मांग कर रहे हैं। हड़ताल की चेतावनी के बाद नगर निगम शिमला के आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान हड़ताल पर जाना उचित नहीं है और इससे शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो प्रशासन एस्मा के तहत कार्रवाई करेगा। अदालत के आदेशों के तहत शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है, लेकिन कर्मचारियों ने साफ कहा है कि वे पिछले 18 वर्षों से शिमला शहर को स्वच्छ रखने में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अब उन्हें डराया और दबाया जा रहा है। यदि मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी भूख हड़ताल तक का रास्ता भी अपना सकते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कालखंड में भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। भाजपा द्वारा आज सोलन में आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हुआ अभूतपूर्व विकास और भारत की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के साथ मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रही है। डॉ सिकंदर कुमार ने उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग से मोदी सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। उन्होंने नगर निगम सोलन में होने वाले चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 4 नगर निगमों सहित 51 शहरी निकायों में चुनाव प्रचार जोरों पर। कांग्रेस व भाजपा ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। नगर निगम व शहरी निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी। 360,800 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोग। राज्य सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी चिट्टा अभियान के सकारात्मक परिणाम आए सामने। एनसीबी ने सरकार से मांगा विवरण। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा, प्रधानमंत्री के आह्वान पर 140 करोड़ भारतीय हर आवश्यक त्याग व सहयोग के लिए तैयार। और शिमला शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों व वेतन बढ़ोतरी को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर।

0: आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है FM 101.8 MHz पर।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंज

0: कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 101.8 MHz पर।

आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र है, FM 101.8 MHz पर रात्रि के 8 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: है? आप कौन है?
1: मैं लक्ष्मी हूँ, वही लक्ष्मी जिसकी तुम आरती कर रहे थे।
0: लक्ष्मी देवी माँ, प्रणाम, साष्टांग प्रणाम।
1: मैं तुमसे प्रसन्न हूँ गरीब दास, तुम्हें वरदान देने आई हूँ। मांगो, क्या मांगते हो?
0: मैं क्या मांगू देवी माँ? मैं
1: धन संपदा और ऐश्वर्य की देवी हूँ गरीब दास, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो।
0: लेकिन देवी माता, मैंने तो इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं। मैं
1: अरे, तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है गरीब दास? मुझे देखकर तुम्हारी आंखें क्यों चौंधिया रही हैं? तुम घबरा क्यों रहे हो?
0: आपका रूप ही ऐसा है देवी माँ, ऐसी चमक, ऐसी रोशनी कभी देखी नहीं।
1: घबराओ नहीं गरीब दास, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो जी चाहे मांग सकते हो।
0: देवी माँ, क्षमा करना, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझे सोचने का तनिक समय दीजिए।
1: गरीब दास, मैं तुम्हें रात भर का समय देती हूँ, खूब सोच लो। सुबह का सूरज निकलते ही मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी।
0: कृपा देवी माँ, आपकी बहुत बहुत कृपा, बहुत बहुत कृपा। धनिया, अरे ओ धनिया, है सो गई? अरे उठ तो है, अरे ये तो बेहोश पड़ी है, लक्ष्मी जी को देख के बेहोश हो गई। धनिया, ओ धनिया, अरे आंखें खोल धनिया।
2: अरे वो औरत गई?
0: औरत? अरे वो औरत नहीं धनिया, देवी जी थी, साक्षात लक्ष्मी माँ।
2: लक्ष्मी जी?
0: हाँ माता लक्ष्मी, हम दोनों से बहुत प्रसन्न है, वरदान देने आई थी।
2: वरदान?
0: हाँ, सवेरे फिर आएंगी। पता था क्या मैं क्या मांगूंगा उनसे?
2: हाय दया, कितनी तेज रोशनी निकल रही थी उनके बदन से, मुझे तो मुरझा आ गई।
0: अरे मेरा भी तो यही।

0: निकालता धनिया, तभी तो घबराहट के मारे मैं कुछ मांग ही ना पाया। अब तू ही बता क्या मांगू, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
1: मैं बताऊं?
0: ओहो तो जल्दी से बोल।
1: सुनो, तुम कहते थे ना मेरे कानों में झुन झुन करने वाला चांदी का झुमका बहुत अच्छा लगेगा, तो मांग लो झुमका।
0: ओफो, तू जब भी सोचेगी अपने झुमके की सोचेगी। अरे इतनी बड़ी देवी से इतनी छोटी चीज मांगी जाती है कहीं? अरे झुमका तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ तेरे लिए।
1: हाँ हाँ, वो तो मैं 5 साल से देख ही रही हूँ, जब भी कहती हूँ तो कह देते हो पैसे नहीं है, और आज देवी जी खुद देने आई रही है और तुम मांगना ही नहीं चाहते। मैं खूब जानती हूँ तुम मुझे मेरा झुमका लाना ही नहीं चाहते।
0: अरे धनिया, ए धनिया, तू समझती क्यों नहीं, देवी जी वरदान देने रोज रोज तो आएंगी नहीं, एक बार मांगना है तो कोई ऐसी चीज क्यों ना मांगे जिससे हमारे कष्ट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। झुमका तो बस कानों में पड़ा पड़ा झुनझुन करता रहेगा।
1: झुनझुन की आवाज कितनी मीठी लगती है, लेकिन तुम्हें तो दारू की बोतल भली लगती है ना, वही तो मांगोगे देवी जी से?
0: अरे धनिया तू कैसी बातें करती है, देवी जी से भला दारू की बोतल मांगूंगा? राम राम राम, अरे भगवान मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ।
1: क्या सोच रहे हो?
0: मैं सोच रहा हूँ धनिया, अपने पास घर नहीं है, गर्मी में हम धूप से जलते रहते हैं, बारिश में पानी में भीगते रहते हैं, जाड़े में ठंड में ठिठुरते रहते हैं, क्यों ना हम देवी जी से एक छत वाला और 4 दीवारों वाला घर मांग लें। बस हम धूप में ना जलेंगे, ना पानी में भीगेंगे, ना सर्दी में ठिठुरेंगे।
1: हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची, घर।
0: हाँ, देवी जी आएंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा, हे देवी माँ, हमें घर दे दो, एक छत वाला 4 दीवारों वाला एक घर, ठीक है ना धनिया?
1: हाँ बिल्कुल ठीक है, घर।
0: हाँ तो अब तू सो जा, मैं भी सोता हूँ, देवी जी से हम घर मांग लेंगे, हम घर मांग लेंगे। धनिया सो गई क्या?
1: नहीं तो।
0: ससुरी नींद नहीं आ रही, जाने कहाँ उड़ गई है।
1: एक बात कहूँ?
0: बोल।
1: लक्ष्मी जी से जो भी मांगोगे वही मिलेगा?
0: जो मांगेंगे वही मिलेगा।
1: तो फिर उनसे ऐसी कोई चीज क्यों ना मांग ले जो थानेदार से भी बड़ी हो?
0: यही तो मैं भी सोच रहा हूँ धनिया। अरे हाँ याद आया, एक दिन मैं कलेक्टर साहब की कोठी में घास छील रहा था, मैंने देखा कि अपने थानेदार साहब कलेक्टर साहब के आगे हाथ बांध के खड़े हैं और कलेक्टर साहब गिटर पिटर जाने क्या चिल्ला रहे हैं।
1: अच्छा?
0: अरे हर गली फूफू करने वाला वो थानेदार बेचारा कलेक्टर साहब के सामने जैसे भीगी बिल्ली बना हुआ था। अरे सुन तो, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि देवी जी से कहूं कि हे देवी जी मुझे कलेक्टर साहब बना दो, फिर तो थानेदार भी मुझ जैसे गरीब दास को सलाम ठोकेंगे। अरे अपनी कोठी होगी, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे और मेरी धनिया, ओए मेरी धनिया रानी की तरह रहेगी।
1: और मेरे सोने के झुमके?
0: अरे धनिया झुमके तो झुमके, मैं तेरे लिए सोने का चंदर हार ले दूंगा।
1: हाय, सोने का चंदर हार?
0: हाँ चंदर हार। अब तू सो जा, सवेरे नींद ना खुली तो देवी जी आके लौट जाएंगी, सो जा।
1: अरे हाँ हाँ, तो फिर तुम भी सो जाओ, जल्दी से सो जाओ।
0: थानेदार क्या, थानेदार तो सलाम मारेगा।
1: सो जाओ सो जाओ।
0: धनिया, धनिया सो गई क्या?
1: नहीं तो।
0: ससुरी नींद क्यों नहीं आ रही? धनिया मेरा तो दिमाग ही घूमने लगा है।
1: अब क्या सोचने लग गए?
0: सोच रहा हूँ देवी जी रोज रोज तो वरदान देने नहीं आएंगी, जो कुछ मांगना है एक ही बार मांग लो, कोई चीज ऐसी नहीं जो कलेक्टर साहब से भी बड़ी हो।
1: ए? कलेक्टर साहब से भी बड़ी?
0: हाँ धनिया, तुझे याद है एक दिन हम मैदान में घास छील रहे थे, इस सड़क से एक मोटर निकली थी, मोटर में झंडा लगा हुआ था, और सड़क के दोनों तरफ दर्शन करने वालों की भीड़ लगी हुई थी, और मोटर में एक आदमी बैठा हुआ था, मालूम है कौन था वो?
1: कौन था?
0: सेठ करोड़ीमल। सेठ करोड़ीमल के पास 4 मोटरें हैं, 4 कोठियां हैं, 4 बीवियां हैं, 4
1: हाँ धनिया 4
0: हाँ धनिया सबको 4 4।

0: क्या हुआ धनिया, क्या हुआ?
1: तुम सेठ करोड़ीमल बन जाओगे तो तुम भी चार बीवियां रखोगे।
0: नहीं रे, मेरी तो एक धनिया ही चार के बराबर है। मेरा मतलब था धनिया, मैं सेठ करोड़ीमल बन जाऊंगा तो मेरे पास भी चार मोटरें होंगी, चार कोठियां होंगी, चार
1: हाय सब कुछ चार चार। मेरे झुमके भी चार चार।
0: तेरे झुमके भी चार चार
1: और चंदर हार भी चार चार।
0: ओ चंदर हार भी चार चार।
1: हाय हाय।
0: लेकिन धनिया सुन, अब भी समय है, खूब अच्छी तरह सोच ले।
1: अरे मैं क्या सोचूं, मेरा तो सिर दुखने लगा सोचते सोचते।
0: सारी रात गुजर गई, हम सो भी ना सके। देवी लक्ष्मी माँ आप आ भी गई?
2: हाँ, मैं आ गई गरीब दास। मांगो, क्या मांगते हो?
0: देवी माता क्षमा, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
2: कुछ नहीं चाहिए? ये क्या कह रहे हो गरीब दास?
0: मैं सच कह रहा हूं देवी माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गरीब दास को बस सुख की नींद दे दो, शांति और संतोष का वर दे दो देवी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
2: लेकिन क्यों?
0: देवी जी, देवी माँ, मोटर बंगला, हीरे जवाहरात और राजा महाराजा की बातें सोच सोच के हम दोनों सारी रात सो नहीं सके, आंखों से नींद उड़ गई। सिर्फ सोचने से यह हाल है तो यह सब कुछ मिल जाने पर क्या होगा, हमारी कितनी रातों की नींद उड़ जाएगी। नहीं नहीं देवी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी रूखी सूखी और ये आसमान की छत कबूल है। सोने का वो बंद पिंजरा हमें नहीं चाहिए जिसकी दीवारों के भीतर हमारी सांस घुट जाए, हमारी नींद उड़ जाए, हमारा सुख चैन लुट जाए।
2: गरीब दास, तुम घसियारे हो लेकिन बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारे उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हूं। लो अपनी ओर से मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं, इससे न तुम्हारा सुख चैन लुटेगा, न नींद उड़ेगी, न सांस घुटेगी।
0: ये क्या है देवी?
2: ये ज्ञान का दिया है जो कभी नहीं बुझता। इसमें प्यार का तेल भरा हुआ है जो कभी समाप्त नहीं होता। तेल में डूबी हुई बाती सत्य की बाती है जो कभी नहीं चुकती। इसमें से निकलने वाली मंगल ज्योति कभी नहीं बुझती। इस ज्योत से न केवल तुम्हारे वरन समस्त मानवता के मन में ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति और संतोष का उजाला होगा। अंधेरे को भगाने के लिए फिर तुम्हें मिट्टी के ये हजार हजार दिए नहीं जलाने होंगे। ये एक अकेला ज्ञान दीपक ही बहुत होगा, इसे संभाल के रखना।
0: धन्य हो देवी माँ, लक्ष्मी माता धन्य हो, मैं आपका दिया हुआ ये ज्ञान दीपक सदा संभाल के रखूंगा और इससे सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा, सारी दुनिया में उजाला करता रहूंगा।
2: तथास्तु। निरक्षरता अंधेरा है, साक्षरता प्रकाश। साक्षर बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञान के दीप प्रकाशित होंगे तभी वास्तव

मंगल वरदान हवा महल के अंतर्गत अभी आपने कुंभे श्रीवास्तव द्वारा लिखित और पुरुषोत्तम दारवेकर द्वारा प्रस्तुत यह नाटिका सुनी।

ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सभी विविध भारती सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। मैं आज हूँ आपके साथ पूजा नरानिया। आइए आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म धड़कन से, कुमार सानू की आवाज़ में, समीर के लिखे बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कसूर फिल्म का गीत। उदित नारायण अलका याग्निक का गाया, समीर की लिखे बोल हैं, धुन बनाई है नदीम श्रवण।

उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में कसूर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत के बोल लिखे थे, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शेंडे, कलापनी कोमाकली की आवाजों में पहेली फिल्म का गीत। संगीत पद किया है इस गीत को MM करीम ने।

पहली फिल्म का गीत सुन रहे थे आप सोनू निगम, श्रेया घोषाल, मधुश्री, बेला शिंदे और कलापनी कोमाकली की आवाजों में। अगला गीत गली में चांद निकला, जख्म फिल्म से, अलका याग्निक की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत MM करीम का ही है, फिल्म का नाम जख्म।

जख्म फिल्म से अलका याग्निक का गाया गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल थे, एमएम करीम का संगीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक अब यहीं संपन्न होता है।

0: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: भारत के UAE को एक्सपोर्ट्स अब $36.63 बिलियन से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो UAE से भारत आने वाले सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
1: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 के

0: शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
1: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर से संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में वीडी सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने वीडी सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को सीपीएम के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए टीवी के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
3: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
5: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
6: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
3: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर एक वर्ष तक

0: सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
1: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
2: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
1: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित कुमार वैद्यान।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
1: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान

0: बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिककाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is underway in New Delhi. Earlier in his opening remarks at the BRICS foreign ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar said that peace and security remain central to the global order.
3: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape.

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत अभी आपने सुना, गुलजार का लिखा, आजी बर्मन का संगीतबद्ध किया, फिल्म घर से।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
0: आशा भोसले का गाया ये गीत सुनिए। शहरयार ने इस गीत को लिखा है, खय्याम का संगीत है, फिल्म का नाम उमराओ जान।

0: उमराह जान फिल्म से ये गीत आपने अभी सुना। शहरयार का लिखा, खय्याम के संगीत से सजा, आशा भोसले की आवाज में।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने की कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपके लिए की ये आखिरी प्रस्तुति। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। शागिर्द फिल्म का गीत है। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

शागिर्द फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत से सजा और इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कुचामन सिटी राजस्थान के जिला मुख्यालय में 14 मई 1943 को प्रसिद्ध निर्माता ताराचंद बड़जात्या के यहाँ जन्मे राजकुमार बड़जात्या। खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 1962 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इन्होंने दाखिला लिया, लेकिन पिता के अनुरोध पर राजश्री प्रोडक्शंस में शामिल होने के लिए इन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी।

राजश्री प्रोडक्शन एक फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी, जिसमें मुख्य रूप से हिंदी फिल्में शामिल रही हैं। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी फिल्में मनोरंजन की मांग को हमेशा ही पूरी करती रही हैं। फिल्मों के वितरण और प्रोडक्शंस के कार्यों को पूरा पूरा सफलतापूर्वक अंजाम देना राजकुमार बड़जात्या ने आरंभ कर दिया था। एक निर्माता के रूप में 1994 से लेकर 2019 तक ये सक्रिय रहे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में पिया के घर से लेकर मैंने प्यार किया तक का सफर इन्होंने पूरा किया। सह निर्माता के रूप में 1979 की फिल्म नैया से ये जुड़े।

राजकुमार बड़जात्या एक फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बड़जात्या परिवार का एक ऐसा सदस्य जिन्होंने फिल्म निर्माण और वितरण के अपने पारिवारिक व्यवसाय को बड़ी ही शिद्दत से निभाया। फिल्म निर्माण की अपनी विरासत में इन्होंने कई पारिवारिक मूल्यों के साथ ली हुई लोकप्रिय संगीतमय कलात्मक फिल्मों का निर्माण किया। एक फिल्मकार की संपत्ति और समाज में मान मर्यादा उनकी फिल्मों से ही पहचानी जाती है। राजकुमार बड़जात्या हिंदी सिनेमा जगत में बेहतरीन कथाओं, अभिनय, गीत संगीत के माध्यम से आम और खास दर्शकों को उनके पसंदीदा विषयों की सार्थक फिल्में देने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। राजकुमार बड़जात्या सबसे पहले 1972 की फिल्म पिया का घर से जुड़े। बासु चटर्जी की लिखी और निर्देशित इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने।

राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म सौदागर, जिसके निर्देशक थे सुधेंदु रॉय, नूतन, अमिताभ बच्चन, पद्मा खन्ना अभिनीत। इस फिल्म के राजकुमार बड़जात्या सहयोगी निर्माता थे। एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में राजकुमार बड़जात्या ने तपस्या फिल्म में काम किया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। इस फिल्म का निर्देशन अनिल गांगुली ने किया और निर्माता थे ताराचंद बड़जात्या। ये फिल्म अनुभवी बांग्ला उपन्यासकार आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित थी। फिल्म में राखी, परीक्षित साहनी, ललिता पवार ने मुख्य भूमिकाएं अदा की थी। संगीत रविंद्र जैन का था। इस फिल्म ने 1976 वर्ष की संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही राखी। सन 1980 में इसी फिल्म को तेलुगु भाषा में भी बनाया गया। सन 1976 की चितचोर, 1980 की एक बार कहूं, 1984 की सारांश और 1989 की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में भी राजकुमार बड़जात्या एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में रहे।

1994 में आई हम आपके हैं कौन, HAH के यानी हम आपके हैं कौन, राजकुमार बड़जात्या की एक निर्माता के रूप में आई संगीतमय रोमांटिक ड्रामा फिल्म, जिसे इनके पुत्र सूरज बड़जात्या ने लिखा और निर्देशित किया और राष्ट्रीय प्रोडक्शंस के बैनर तले इसका निर्माण किया गया। माधुरी दीक्षित और सलमान खान अभिनीत 5 अगस्त 1994 को रिलीज हुई यह फिल्म वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म ने फिल्म वितरण के नए तरीकों को अख्तियार कर साफ सुथरी कहानी के साथ भारतीय फिल्म उद्योग को हिंसक कहानी ली हुई फिल्मों के बीच बदलाव का एक सुकून भरा एहसास दिया। साथ ही साथ निर्माण और वितरण का तरीका भी बदला इस फिल्म ने। राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य अवार्ड्स में इस फिल्म की धूम रही। पहला

एच ए एच के बाद 1999 में आई निर्माता राजकुमार बड़जात्या की हम साथ साथ हैं। अजीत कुमार बड़जात्या, कमल कुमार बड़जात्या, अपने परिवार के सदस्यों के साथ राजकुमार बड़जात्या ने इस फिल्म का निर्माण किया। कहानी और निर्देशन सूरज बड़जात्या का था। ये फिल्म भी उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली और दशक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। समीक्षकों ने भी इसे खूब सराहा। ये फिल्म टोरंटो में 6 स्क्रीन्स पर कनाडा के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। वैसे ये फिल्म अपनी निर्धारित प्रदर्शित तिथि से पहले ही रिलीज हो जाती, पर संगीतकार राम लक्ष्मण ने साउंड ट्रैक एल्बम की जांच के लिए समय लिया। पोस्ट प्रोडक्शंस, सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी के साथ साथ अन्य सभी काम पूरे होने के बाद आखिरकार 5 नवंबर 1999 को स्क्रीन्स पर ये फिल्म आई और

2002 में फिल्म आई हम प्यार तुमसे कर बैठे। जुगल हंसराज और टीना राणा इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे। 2003 की फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं, जो चितचोर पर आधारित फिल्म थी और इस फिल्म के कलाकार थे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन। राशि प्रोडक्शंस की इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था यशराज फिल्म्स ने।

राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित सन 2006 में फिल्म आई विवाह। मुख्य कलाकार थे शाहिद कपूर और अमृता राव। रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें सगाई से लेकर शादी तक के सफर की कहानी को बखूबी प्रदर्शित किया गया था।

एक विवाह ऐसा भी, इस नाम की फिल्म लेकर आए राजकुमार बड़जात्या साल 2008 में। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी ईशा कोप्पिकर, सोनू सूद और आलोक नाथ ने। ये फिल्म आशापूर्णा देवी की कहानी पर आधारित

हम राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं। 2010 में इन्होंने फिल्म बनाई इस लाइफ में, 2011 में लव यू मिस्टर कलाकार। ये फिल्में राजकुमार बड़जात्या की अन्य फिल्मों की तरह लोकप्रिय नहीं हुई।

इसी क्रम में 2011 में सचिन पिलगांवकर के निर्देशन में राष्ट्रीय फिल्म्स की प्रसिद्ध फिल्म अखियों के झरोखों से की सीक्वल आई जाना पहचाना, जिसमें सचिन और रंजीता ने मुख्य भूमिकाएं निभाई। ये फिल्म भी कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। फिर 2015 में आई राजकुमार बड़जात्या द्वारा निर्मित फिल्म। ये फिल्म उस वर्ष की दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो।

सलमान खान, सोनम कपूर, नील नितिन मुकेश अभिनीत ये फिल्म दर्शकों के मापदंड पर खरी उतरी। 2019 में एक निर्माता के रूप में राजकुमार बड़जात्या अपनी आखिरी फिल्म लेकर आए हम चार। अभिषेक दीक्षित लिखित और निर्देशित इस फिल्म में चार नए चेहरों को पेश किया गया था। ये राजश्री प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड की 58वीं फिल्म थी।

0: अपनी जमीन से जुड़ी हुई कहानियों को, भावनाओं को, रिश्तों को बड़े ही जतन और प्यार से सिनेमा के पर्दे पर प्रदर्शित किया। इनकी फिल्में भारतीय सिनेमा इतिहास में बेहतरीन कथानकों और प्रस्तुतिकरण के लिए हमेशा ही चिन्ही जाएंगी। और जब भी दर्शक इन फिल्मों को देखेंगे, राजकुमार जी की कथा शैली और निर्माण कला के मुरीद हुए बिना नहीं रह सकेंगे। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म निर्माता राजकुमार बड़जात्या पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम खेल जगत।

कार्यक्रम खेल जगत सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेल जगत में। दोस्तों, सप्ताह भर की खेल खबरों के साथ इस प्रोग्राम में हम आते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं खेल जगत से जुड़ी हुई खबरों के साथ। तो चलिए कार्यक्रम में सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल की। जी हां, आईपीएल 2026 के 58वें मैच में गुरुवार यानी आज पंजाब किंग्स 11 और मुंबई इंडियंस के बीच जो है वो एक शानदार मुकाबला हो रहा है और इस मैच में पंजाब का जीतना बहुत ही ज़रूरी है। पंजाब के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए बहुत ही अहम है और जबकि मुंबई के लिए यह केवल अपनी साख बचाने की लड़ाई है। और सीजन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो पंजाब ने बहुत ही शानदार की थी और अपने पहले 7 मैच जीतकर वो अजय रहा था और एक रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि पिछले 4 मैचों में लगातार मिली हार ने श्रेयस अय्यर की टीम को थोड़ा मुश्किल में डाल दिया है। धर्मशाला में खेले गए पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब को 211 रनों के विशाल स्कोर के लिए सफलतापूर्वक चेंज कर लिया था और पंजाब 11 मैचों में 13 अंकों के साथ टेबल में चौथे स्थान पर है। उसे अंतिम 4 में जगह पक्की करने के लिए जीत की पटरी पर लौटना होगा। पंजाब को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए अपने बाकी बचे 3 मैचों में से कम 2 मैच जीतना बहुत ही ज़रूरी है। और बल्लेबाजी में आपको बता देते हैं, प्रियांश आर्य शानदार फॉर्म में है लेकिन उनका साथ देने के लिए प्रभ सिमरन को फॉर्म में लौटना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अलावा फील्डिंग में भी जो गलतियां कर रहे हैं, कैच छोड़ रहे हैं पंजाब के लिए, वो थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर है। बिल्कुल दोस्तों, और 5

बार की चैंपियन मुंबई के लिए इस सीजन किसी बुरे सपने के जैसा रहा है, क्योंकि मुंबई जो है वो आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। सितारों से सजी होने के बावजूद यह टीम बेहतर परिणाम देने में विफल रही है और 11 मैचों में से केवल 6 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। पंजाब के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप जो हैं वो नई गेंद के साथ मुंबई के पूर्व कप्तान रोहित के लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे और रोहित के लिए यह सीजन उतार चढ़ाव भर रहा है। और जहां उन्होंने 6 पारियों में 243 रन बनाए हैं, दूसरी ओर अर्शदीप अपनी लय वापस कर चुके हैं और अब तक 13 विकेट ले चुके हैं। और पावर प्ले की बात करें तो इस दौरान दोनों का आमना सामना मैच के परिणाम पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अर्शदीप की अगुवाई में पंजाब का पेस अटैक सीजन पर जो है वो 10 टीमों सबसे खराब इकोनॉमी रेट पर साबित हो सकता है। और अर्शदीप ने अपने 11 मैचों में अधिकांश में 10 से अधिक की दर से रन जुटाए लुटाए हुए हैं। और शुरुआत में जेवियर वॉटलेट और अर्शदीप की जोड़ी सफल रही, लेकिन उसके उपरांत जो है वो उनका संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा रहा। श्रेयस अय्यर की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने भी बल्लेबाजी में आगे बढ़कर नेतृत्व किया और 5 अर्धशतक जड़े हैं। स्पिन और उनके खिलाफ जो खेल में है मिडल ओवर्स में टीम का सबसे अहम खिलाड़ी बनता है, लेकिन उन्हें मुंबई के अफगान मिस्ट्री स्पिनर गजनफर को चुनौती देना पार होगा। और गजनफर 13 विकेट इस सीजन में मुंबई के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। वे श्रेयस को जल्दी पेवेलियन भेजने की कोशिश करेंगे और दोनों टीमें जो हैं वो सीजन में दूसरी बार आमने सामने होगी। पिछली भिड़त हुई थी 16 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पंजाब जीता था और उस मैच में मुंबई के डिकॉक ने शतक लगाया था और अर्शदीप की उस वक्त भी बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई थी और मुंबई की बैटिंग की उन्होंने कमर तोड़ दी थी। अब देखना यह होगा कि पंजाब जो है वो अपनी जीत का सिलसिला दोहराता है या फिर मुंबई उसका खेल बिगाड़ देती है। और आपको बता देते हैं कि मुंबई भले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन वह किसी भी टीम का समीकरण बिगाड़ने और बनाने की ताकत रखती है। कप्तान हार्दिक पांड्या हालांकि चोट के कारण पिछले 2 मैचों से बाहर है, लेकिन उनकी वापसी पर अभी संशय बरकरार है। और सूर्या कुमार के लिए पिछला 1 साल इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट दोनों में खराब रहा है। विशेष 3 मैचों में अपनी खोई हुई लय हासिल करना चाहते हैं। खेल जगत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से।

अगली खेल खबर की बात करें तो T20 क्रिकेट ने बल्लेबाजी का मतलब पहली ही गेंद पर आक्रमण करना तो बनाया ही है, तो IPL 19 ने इसे सही मायने में बदल दिया है। अब पहली ही गेंद पर बल्लेबाज छक्के के लिए भेजने की कोशिश करता है और इस होड़ में पंजाब किंग्स के ओपनर प्रियांश आर्य ने सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स मैच जो खेला गया था उनके खिलाफ पहली गेंद पर छक्का लगा दिया था। यह एक ऐसा कारनामा था जो IPL के 19 साल के इतिहास में गिनती के बल्लेबाज ही कर पाए हैं, लेकिन प्रियांश इन गिनती के बल्लेबाजों में से भी आगे निकल गए हैं। और आपको बता देते हैं कि प्रियांश ने देखिए बहुत सारे ऐसे कारनामे किए हैं। 5 बल्लेबाज IPL मैच की पहली गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया है और 2 बार ये कारनामा करने वाले इकलौते बल्लेबाज बन चुके हैं प्रियांश। 3 बार अब की किसी IPL पारी की पहली गेंद पर छक्का लगा चुके हैं प्रियांश आर्य और 2 बार मैच की पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले इकलौते गेंदबाज बन चुके हैं मिचेल स्टार्क, और 4 बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले यशस्वी जायसवाल के बाद नंबर 2 पर हैं प्रियांश।

अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। तो फीफा विश्व कप के लिए शुरुआती 35 से 55 संभावित खिलाड़ियों की घोषणा होने लगी है और मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने अपने संभावित जो खिलाड़ी हैं उनमें दिग्गज स्टार लियोन मेसी को जगह दे दी है और जिनका ये आखिरी विश्व कप माना जा रहा है। इसी तरह ब्राजील ने भी संभावितों में से नेमार को शामिल किया है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 48 जो टीमें हैं उनमें 3 गोलकीपर समेत 26 खिलाड़ियों को फाइनल टीम 1 जून तक घोषित कर दी जाएगी और नामों को हरी झंडी 2 जून को फीफा की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद मिलेगी। इस बार टीमों की संख्या में बढ़ोतरी होने के चलते पहली बार 1000 से ज़्यादा खिलाड़ी विश्व कप में भाग लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, खेल खबरों का ये दौर यूं ही हम जारी रखेंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का नाम है खेल जगत। कार्यक्रम खेल जगत में अब बात कर लेते हैं ट्रैप शूटर जोरावर सिंह की। एशिया के नंबर एक और विश्व के छठे नंबर के ट्रैप शूटर जोरावर सिंह सिंधु को इस एशियाई खेलों के लिए भारत की संभावित शॉटगन टीम में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप व घरेलू चैन ट्रायल के दौरान जोरावर सिंह का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था और विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप फाइनल की तैयारी में व्यस्त होने के बावजूद उनके लिए इन स्पर्धाओं में भाग लेना अनिवार्य था। वह एक महीने पहले विश्व रैंकिंग के चौथे स्थान पर थे और जोरावर ने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ में अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि पिछले 6 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर उन्होंने हासिल किया है और 47 वर्षीय जोरावर पिछले साल अक्टूबर में एथेंस में विश्व चैंपियनशिप के कांस्य जीतकर ट्रैप शूटिंग में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय निशानेबाज बने थे। इसके साथ ही राष्ट्रमंडल खेल ट्रायल में नीरज को छूट मिल गई है। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल में छूट मिल गई है और 22 से 25 मई तक रांची में होने वाले फेडरेशन कप राष्ट्रमंडल खेलों का अंतिम ट्रायल रखा गया था। इसमें सभी एथलीटों का जो खेलना था वो अनिवार्य था, लेकिन नीरज चोपड़ा को 5,000-10,000 मीटर में एशियाई खेलों का स्वर्ण जीतने वाले एथलीट गुलवीर सिंह को विदेश में तैयारी करने के कारण एथलेटिक संघ ने ट्रायल में उनको छूट दी है और इस तरह से जो है वो अब नीरज को इस छूट के कारण जो है ओलंपिक पदक में वो विजेता रहे हैं, इसलिए उनको उसमें छूट मिली हुई है। अगली खेल खबर की हम बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के बाद पहली चुनौती 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच में होगी, जिसमें जसप्रीत बुमराह को आराम मिल सकता है, लेकिन मोहम्मद शमी की वापसी के आसार नहीं है और चंडीगढ़ में मैच के लिए इसी सप्ताह या आगामी सप्ताह में चयन समिति की बैठक हो सकती है। और BCCI सूत्र के हवाले से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति के सामने सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो टीम की तेज गेंदबाजी चुनना है। IPL में थके दिखे जसप्रीत बुमराह को आराम मिल सकता है और मोहम्मद सिराज भी वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते आराम की लिस्ट में है और रेगुलर गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा ही बसते हैं और अंशुल कंबोज और गुरनूर बरार के पास उतना अनुभव नहीं है, जबकि आकाश दीपक सिंह और हर्षित राणा अनफिट हैं। इस लिहाज से चयनकर्ताओं के पास जो है वो जम्मू कश्मीर को रणजी चैंपियन बनाने वाले आकीब नबी का विकल्प ही बचता है। अब बात कर लेते हैं वेटलिफ्टिंग की। तो भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने एशियाई सीनियर वेटलिफ्टिंग में 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीते हैं। ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में रजत पदक जीता और कुल 194 किलो वजन उठाकर ओवरऑल तीसरे स्थान पर रही। इस वर्ग में चीन की जिनलाल झाओ ने स्वर्ण जबकि वियतनाम की हुआई हुंग ने रजत पदक जीता और यह चैंपियनशिप 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का क्वालिफायर इवेंट भी है।

आईपीएल की बात एक बार फिर कर लें तो आईपीएल 19 की 10 में से दो टीम हारकर बाहर हो चुकी है और बाकी 8 टीम में से 4 टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। अंक तालिका के हिसाब से देखें तो 18 अंक को सुरक्षित नंबर माना जा रहा है, जिसमें गुजरात 2 अंक, बेंगलुरु हैदराबाद 4-4 अंक और आरसीबी केकेआर मैच के पहले तक और पंजाब 5 अंक दूर है। चेन्नई और राजस्थान भी 12-12 अंक लेकर बहुत पीछे नहीं हैं। दिल्ली के अंक 10 हैं, जबकि मुंबई लखनऊ होड़ से बाहर हो चुकी हैं, पर उनकी जीत बाकी का खेल बिगाड़ सकती है। और हैदराबाद जो है वो दिल्ली गुजरात के 2-2 जबकि कोलकाता के 4 मैच शेष बचे हुए हैं, बाकी सभी टीमों के 3-3 मैच बचे हुए हैं और क्वालिफिकेशन के समीकरण और संभावना जानना ऐसे में बहुत ही ज़रूरी हो गया है।

क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी प्रो लीग के पहले खिताब का इंतज़ार और बढ़ गया है। अल नासर 33वें मैच में दूसरे स्थान पर खड़ी अल हिलाल से 90 मिनट तक 1-0 से आगे रहे और इस जीत से अल नासर का खिताब पक्का हो गया है। लेकिन सेट पीस टाइम में आखिरी सेकंड में गोल कीपर बेंटो ने आत्मघाती गोल में से मैच को 1-1 से ड्रॉ हो गया और अल नासर अल हिलाल से 5 अंक आगे है और उनका यह मैच जो है वो चमाक से बच गया है और इस तरह से रोनाल्डो का इंतज़ार और बढ़ गया है। कार्यक्रम खेल जगत इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त हो चला है संगीत में विराम का।

कार्यक्रम खेल जगत, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। कार्यक्रम की अगली खेल खबर की अगर बात करें तो दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया और उन्होंने क्वार्टर फाइनल एड्रीना पेलेग्रिना को 6-2, 6-3 से हराया और इस जीत के साथ सिनर ने नोवाक जोकोविच से लगातार 31 मास्टर सीरीज मैच जीतने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जोकोविच ने साल 2011 में यह उपलब्धि हासिल की थी और शानदार फॉर्म में चल रहे सिनर पिछले साल अक्टूबर में शंघाई मास्टर्स के बाद किसी भी मास्टर इवेंट में हारे नहीं हैं। अगर सिनर रोम में ट्रॉफी उठाते हैं तो वे जोकोविच के बाद सभी 9 मास्टर्स के 1000 इवेंट जीतने वाले दुनिया के केवल दूसरे पुरुष खिलाड़ी बन जाएंगे। तो श्रोताओं, इन्हीं खेल खबरों के साथ आज का खेल जगत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत, आकाशवाणी का यह हमीरपुर केंद्र एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम चांदनी रातें।

चांदनी रात में कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी दोस्तों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में। चांदनी रातें रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित यह कार्यक्रम दोस्तों रहता है। कि सौ दिल अगर होते, कि सौ दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सब के सब तुम्हारे होते।

दिल में तेरी चाहत लबों पे तेरा नाम है। दिल में तेरी चाहत लबों पे तेरा नाम है। तू मोहब्बत कर या ना कर, मेरी जिंदगी तेरे नाम है।

रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। के ठहर जा नजर में तू, जी भर के तुझे देख लूं, बीत जाए ना ये पल कहीं, इन पलों को मैं समेट लूं।

चांदी रातों का ये हसीन सफर आप तय कर रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर के साथ। मंजिल भी तुम हो, तलाश भी तुम हो, उम्मीद भी तुम हो, आस भी तुम हो, इश्क भी तुम हो और जुनून भी तुम हो, एहसास तुम हो, प्यास भी तुम हो।

कि हश्र न पूछो मेरी धड़कनों का, तुम जो पास होती हो तो थम सी जाती हैं, और ना हो तो सुकून भला कहाँ पाती हैं।

इसी गीत के साथ चांदनी रातें कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान

0: ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति चिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। प्रातः 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।